0: हरी मिला लीजिए। इस वक्त सुबह के ठीक 5 बजे हैं।
1: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग MBC रेडियो

प्रभात आराधना हर सुबह 5 से 6 बजे तक भक्ति के मधुर सुरों में कीजिए ईश्वर की आराधना रेडियो मॉरिशस पर।

0: ईश्वर की आराधना के इन मधुर सुरों के साथ प्रभात आराधना का ये सफर यही समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे सुबह 5 बजे भक्ति के नए गीतों के साथ रेडियो मॉरिशस पर।
1: श्रावण मास के संदर्भ में आइए सुनिए ये विशेष कार्यक्रम।

भक्त जनाश्रयं च वरदं वंदे शिवं शंकरं वंदे शिवं शंकरं। मैं आचार्य पार्थ कुमार व्यास मॉरिशस सनातन धर्म टेम्पल फेडरेशन की ओर से श्रावण मास के उपलक्ष में विवाह संबंधित श्रावण मास में भगवान शिव की आराधना और शिव की पूजा का महत्व में आज प्रस्तुत करूँगा। हिंदू परंपरा में भगवान शिव और माता पार्वती को आदर्श दाम्पत्य जीवन का प्रतीक माना जाता है। माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तप और अखंड भक्ति की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्नता होकर भगवान शिव ने उन्हें अपने अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया, इसलिए विवाह योग्य जीवन साथी और दाम्पत्य सुख के लिए भगवान शिव और माता पार्वती की संयुक्त पूजा विशेष महत्व माना जाता है। श्रावण मास भगवान शिव का अत्यंत प्रिय महीना है मास है। इस महीने में अविवाहित युवक युवतियों योग्य जीवन साथी की प्राप्ति के लिए तथा विवाहित दंपति वैवाहिक जीवन में अपना दाम्पत्य जीवन में प्रेम और विश्वास सौहार्द और सुख समृद्धि के लिए भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना करते हैं। श्रावण के प्रत्येक सोमवार को व्रत रखकर शिवलिंग पर जल गंगा जल दूध और बेलपत्र अर्पित किए जाते हैं। साथ ही ओम नमः शिवाय या तो महामृत्युंजय मंत्र का जप, शिव पंचाक्षर स्तोत्र या तो शिव चालीसा अवश्य माता पार्वती के सामने करना चाहिए और स्तुति पाठ करते हुए ध्यान से महामृत्युंजय मंत्र जप करना चाहिए। धार्मिक मान्यता के अनुसार श्रद्धा और

0: सच्ची भावनाओं से की गई शिव और पार्वती की उपासना से विवाह में आने वाली बाधाएं दूर होती है, योग्य जीवन साथी की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त होता है तथा दाम्पत्य जीवन में प्रेम, विश्वास, धैर्य और पारंपरिक सम्मान बढ़ता है। श्रावण मास की विशेष आराधना केवल विवाह की नहीं लेकिन भगवान शिव के आराधना और प्रसन्न करने का एक अवश्य महीना होता है। भगवान शिव सुख, शांति, समृद्धि देने वाला देव है, महादेव है, उसको हम महारुद्र के रूप में भी पूजते हैं। तो अवश्य हम श्रावण मास में भगवान शिव की आराधना उपासना करें। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।
1: श्रावण मास के संदर्भ में अभी आप सुन रहे थे ये विशेष कार्यक्रम।

नमस्कार, श्री सनातन धर्म मंदिर परिषद की ओर से इस श्रावण प्रभात कार्यक्रम में आचार्य सुरेश सुपाल मिश्र का अभिवादन। रुद्रीप्रात के प्रथम खंड में 10 लोक है, इसमें विघ्न विनाशक श्री गणेश जी की वंदना करते हुए उनकी महिमा का वर्णन किया गया है। इस अध्याय को पाठ करने से मन को शांति मिलती है, मनुष्य को विद्या ज्ञान मिलता है, वह सत्कार्यों की ओर अग्रसर होकर मोक्ष प्राप्त करता है।

हे गणपति, हम आपका आवाहन करते हैं। देवगणों के मध्य गणेश रूप में आप ही प्रजा रक्षक है, आप ही प्रिय मित्रों के भी रक्षक है। हम आपका आवाहन करते हैं, आप ही नवनिधियों के अधिपति है। हम आपका आवाहन करते हैं, हे विघ्नेश्वर, आप ही गर्भ बीज द्वारा समस्त जगत को प्रकट करते हैं तथा स्वयं प्रकट होते हैं। अतः हमारी आकांक्षाओं की पूर्ति हेतु आप हमें शक्ति प्रदान करें। गायत्रे त्रितुभजगस्य अनुष्टुप पंख्या सह बृहस्पति होष्णि हाका कुप्सूचे बिहि सम्यंतुत्वाः। हे परमेश्वर, गायत्री त्रिष्टुप जगति अनुष्टुप पंखी बृहति एवं उष्णि छंदों द्वारा ऋषिगण सदैव आपकी स्तुति करें।

0: सहित ये समस्त वेद मंत्र आपका कल्याण करें। ओम शांति शांति इति शुभम।
1: श्रावण मास के संदर्भ में अभी आप सुन रहे थे ये विशेष कार्यक्रम।

0: श्रावण मास के संदर्भ में आइए सुनिए ये विशेष कार्यक्रम।
1: हरि ओम तत्सत् वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानांश्च कर्तारो वंदे वाणी विनायको भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिनो याभ्यां वीना न पश्यन्ति सिद्ध स्वान्तः स्थमीश्वरम् श्री श्री सीतारामचंद्राय नमः श्रीरामदूताय नमः श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः भगवते श्री सांब सदा शिवाय नमः ओम नमो भगवते सिया राम कृष्ण हरि नारायण। आज संडे 9 अगस्त श्रावण प्रभात वाणी कार्यक्रम में आप सबों का स्वागत करता हूं हिंदू महासभा की ओर से। शिव सती चरित्र का हम लोग पाठ कर रहे हैं। सती माता रामचंद्र जी की परीक्षा लेने के लिए सीता जी का रूप धारण करते हैं। गोस्वामी जी इसको आगे बढ़ाते हैं। चलिए हम लोग आज का पाठ करें।

सती जी के बनावटी वेश को देखकर लक्ष्मण जी चकित हो गए और उनके हृदय में बड़ा भ्रम हो गया। वे बहुत गंभीर हो गए, कुछ कह नहीं सके। धीर बुद्धि लक्ष्मण जी प्रभु श्री राम के प्रभाव को जानते थे।

0: सब कुछ देखने वाले और सबके हृदय की जानने वाले देवताओं के स्वामी श्री रामचंद्र जी सती के कपट को जान गए, जिनके स्मरण मात्र से अज्ञान का नाश हो जाता है, वही सर्वज्ञ भगवान श्री रामचंद्र जी है। गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी यह वर्णन कर रहे हैं कि सती ने जो परीक्षा की युक्ति अपनाई, इसको भगवान रामचंद्र जी ने जान लिया, पहचान लिया। अब इसके ऊपर भगवान श्री रामचंद्र जी की प्रतिक्रिया क्या होगी, जैसे कहे सती की इस परीक्षा से श्री राम जी की रिएक्शन क्या है, इसको आगे की चौपाई में तुलसीदास जी वर्णन कर रहे हैं, जिसको हम लोग कल आगे बढ़ाएंगे। हम लोगों ने आज बालकांड दोहा संख्या 53 यानी दोहा नंबर 53 से पाठ किया। चलिए आज इसको यही विराम दो, कल इसको आगे बढ़ाएंगे। ओम सत्यम शिवम सुंदरम, ओम शांति ही शांति ही शांति, ओम श्री सीताराम चंद्र अर्पणमस्तु, साधुवाद, जय श्री हरि।
1: श्रावण मास के संदर्भ में अभी आप सुन रहे थे ये विशेष कार्यक्रम।

आर्य सभा मॉरिशस द्वारा प्रस्तुत वेद मंत्र की व्याख्या। मैं प्रोफेसर धर्मेंद्र शास्त्री। श्रोताओं, आज मैंने अभी जिस मंत्र का पाठ किया है, यह यजुर्वेद के 31वें अध्याय का 18वां मंत्र है। कितनी सुंदर प्रार्थना इस मंत्र के अंदर की गई है। लोग कहते हैं, क्या परमात्मा के दर्शन होते हैं? क्या परमात्मा को, भगवान को देखा जा सकता है? तो इस मंत्र में तो बिल्कुल बहुत सुंदर बात ये बताई गई है, वेदाहमेतम। वेद का अर्थ है टू नो, जानना। मैं इस पुरुष को जानता हूँ। वेद का मतलब है जानना, क्योंकि वेद शब्द जिस धातु से बना है, विद ज्ञाने, तो यहाँ पर भी उत्तम पुरुष एक वचन में आया है, वेद अहम एतम। एतम पुरुषम, इस महान पुरुष को मैं जानता हूँ, जो कैसा है, महानतम, बहुत बड़ा है, बड़ों से भी बड़ा है, उससे बड़ा दुनिया में और कोई नहीं है। आदित्य वर्णम, आदित्य माने सूर्य, सूर्य का वो रचक है, प्रकाशक है, वही एक परमात्मा है। और फिर क्या कहा उसके लिए, तमसह परस्तात। तम का अर्थ होता है अंधकार, अज्ञान, अविद्यादि दोष से परमात्मा रहित है। ऐसा जो परमात्मा है, उस परब्रह्म के ज्ञान और उसकी कृपा के बिना कोई भी जीव सुखी नहीं हो सकता। इसलिए यहाँ पर कहा गया है, तमेव विदित्वाति मृत्युमेति। उस परमात्मा को जान के ही जीवात्मा मृत्यु का उल्लंघन कर सकता है, अर्थात मृत्यु और जन्म के बंधन से वो छुटकारा प्राप्त कर सकता है। और अंतिम में मंत्र में बड़ी प्यारी बात कही गई है, नान्य पंथा विद्यते अनाय। बिना परमेश्वर की भक्ति, स्तुति, प्रार्थना करने के सिवा इस दुनिया में मुक्त होने का कोई भी मार्ग नहीं है। इसलिए परमात्मा की ऐसी दृढ़ आज्ञा है, सब मनुष्यों को इसमें वर्तना चाहिए। सब प्रकार का हमारे जीवन का पाखंड और जंजाल हम छोड़ दें और उस परमात्मा का जो सत्य स्वरूप है, जो ज्ञान स्वरूप है, जिसको हम कहते हैं सत चिद आनंद, उस आनंद को ही हम इस मंत्र के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। जीवात्मा का ये कर्तव्य है कि वह ईश्वर को धन्यवाद करें। और इस मंत्र में जो पहला ही शब्द भगवान कहते हैं, वेद, मैं उसको जानता हूँ, वो परमात्मा कैसे हैं, अज्ञान, अविद्या, अंधकार से रहित है, पांच प्रकार के क्लेशों से रहित हैं, पांच प्रकार के दुखों से रहित हैं। जो पांच प्रकार के दुख बताए हैं ना, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये सब जीवात्मा को बंधन में डालने वाले हैं, परंतु परमात्मा इन सब क्लेशों से, दुखों से

रहित है। तमसह, ये तमस विशेषण अंधकार के लिया है। कौन सा अंधकार? जो अज्ञान का अंधकार है उसको हम दूर करें और परमात्मा को प्राप्त करें, यही इस मंत्र का संदेश है। श्रोताओं, धन्यवाद।

0: मास के संदर्भ में आइए सुनिए यह विशेष कार्यक्रम।
1: ओम अहमिन्द्रो न पराजिज्ञ ईत्वनम् न मृत्यवेव तस्थे कदाचन सोममेन मा सुन्वन्तो याचता वसून मे पूरवः सख्ये ऋषाथन् ओम शांते शांते शांते। आदरणीय श्रोताओं को पंडिता ज्योतनी भोला रघुबेर की ओर से सादर सप्रेम नमस्ते। गहलोत राजपूत महासभा की ओर से श्रावणी उपाकर्म के शुभ उपलक्ष पर प्रस्तुत विशेष कार्यक्रम में आप सभी जनों का हार्दिक स्वागत है। श्रोताओं, हमें आत्मविश्वासी बनना है। आत्मविश्वासी के समक्ष कोई भी कार्य असंभव नहीं रहता। जब मनुष्य के हृदय में यह विश्वास हो जाता है कि मैं इस कार्य को कर लूँगा, तब संसार की कोई शक्ति उसे पराजित नहीं कर सकती। जब आत्मविश्वास के समुद्र में ज्वार आता है तो वह हिमालय जैसे महान पर्वत को भी तुझ कूड़े करकट की भांति बहा सकता है। आत्मविश्वासी के समक्ष पर्वत नम जाते हैं, सागर थम जाते हैं, सरिताएं सूख जाती हैं और सूर्य भी परमाणु बन जाते हैं। आत्मविश्वासी कठिनाइयों से भागता नहीं, अपितु वीरतापूर्वक उनका सामना करता है। और तो और, आत्मविश्वासी मृत्यु से भी नहीं घबराता। शत्रुओं ने कालोना के स्टीफन को कैद करके पूछा, बताओ अब तुम्हारा किला कहाँ है? स्टीफन ने हृदय पर हाथ रख कर कहा, यह है आत्मविश्वास की शक्ति। कभी मत सोचिए मैं दीनहीन हूँ, बेकार हूँ, निर्बल हूँ। मेरे ऐसे भाग्य कहाँ कि मैं समृद्धि प्राप्त कर सकूँ। मैं तुच्छ हूँ, शूद्र हूँ। ऐसी भावनाएं जीवन को उठाती नहीं, गिराती हैं। आप ऐसा सोचिए, अरे मैं तो महान हूँ, मेरी शक्ति महान है। मैं पर्वतों को विदीर्ण कर सकता हूँ, सागरों को लांघ सकता हूँ, इस पृथ्वी को गेंद की भांति यहाँ से वहाँ रख सकता हूँ। सोचो कि मैं हाड़ मांस का निर्जीव लोथड़ा नहीं हूँ। मैं आत्मा हूँ जिसकी कभी मृत्यु नहीं होती, जिसका कभी पराजय नहीं होता। मुझ में दैवी शक्ति भरी हुई है। संसार का कोई कार्य ऐसा नहीं जिसे मैं न कर सकूँ। श्रोताओं, वेदों और धर्म शास्त्रों में मानव जीवन को ऊंच बनाने वाले सैकड़ों और सहस्त्रों वाक्य भरे पड़े हैं। यह ठीक है कि मनुष्य में कमियों हैं, त्रुटियों और दोष होते हैं, परंतु अपने को बार बार निर्बल और पापी कहने वाला अपनी दीनता ही बढ़ाता है। ऐसे हीन विचारों को अपने पास मत भटकने दो। ध्यान के लिए धन्यवाद। इति ओम शांते शांते शांते।

0: श्रावण मास के संदर्भ में आइए सुनिए यह विशेष कार्यक्रम।
1: ओम

0: धीमांस्तनमो अस्तु अस्मै।
1: जैसे जल अग्नि को रोकता है और अग्नि जल को रोककर उसे समाप्त कर देती है, उसी प्रकार हम दुर्गुणों और दुष्ट कर्मों को रोकें। परमात्मा सबको सद्बुद्धि दे ताकि दुष्ट कर्मों को भली भांति त्याग कर सत्कर्मों में प्रवृत्त हो सकें। जैसे जल और अग्नि तत्व अलग अलग होते हैं, वैसे ही सत्कर्म और दुष्कर्म अलग अलग होते हैं। सत्कर्म से दुष्कर्म को रोका जाता है, पुण्य से पाप को रोका जाता है। हम दुष्कर्म और पाप से अलग होकर परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करके सुरक्षित रहें।
0: ओम उज्जी द्वे स्तनयन्ति अभ्रिग्रंदति ओषधी यदा वह पृष्ठिमातरः पर्जन्योरेतसावति।
1: सूर्य की कल्याणकारी किरणों द्वारा खींचे गए जल के कणों से जब मेघ वर्षा करते हैं तो पृथ्वी पर जीवन का संचार होता है। जब मेघ गरजता है और पर्याप्त मात्रा में वर्षा होती है तो भूमि तृप्त हो जाती है। भूमि के तृप्त हो जाने से भूमि में अन्न धन की वृद्धि होती है। वर्षा जब संतुलित मात्रा में होती है तो सभी प्रकार के दिव्य संपदाएं, औषधि, वनस्पति, लताएं, जड़ी बूटियां, अन्न एवं जीवनदायी पदार्थ उत्पन्न होते हैं। हरी भरी धरती माँ के समान सब जीवों की रक्षा करती है। सृष्टि की इस अद्भुत प्रक्रिया में परमात्मा की कृपा बनी रहती है।
0: ओम नमः सायं नमः प्रातर नमो रात्र्या नमो दिवा भवाय च सर्वाय च उभाभ्याम अकरं नमः।
1: सर्वशक्तिमान न्यायकारी दयालु परमात्मा को सायंकाल, प्रातःकाल, रात्रिकाल और दिवस काल में नमन। सभी कालों में परमात्मा के प्रति सम्मान और आभार प्रकट करना प्रत्येक जीव का धर्म है, क्योंकि ऐसा करने से परमात्मा के दिव्य गुणों का प्रभाव जीव पर अवश्य पड़ता है। परमात्मा के गुणों का दिव्य प्रभाव जीव को पाप कर्म करने से रोकता है और उन्हें श्रेष्ठ कर्म करने के लिए प्रेरित करता है। सुख देने वाले और दुखों को हरने वाले परमात्मा को हृदय से नमन करते हुए अर्थात उनकी आज्ञाओं का पालन करते हुए अपने जीवन को सार्थक बनावे।
0: ओम।

0: वेरी गुड मॉर्निंग आप सभी को, सुप्रभात। घर में लाते चलिए, सुबह के ठीक 6 बज रही है। समय हो चुका है संक्षिप्त समाचारों का, तो आइए इसे हम अभी के साथ है। संध्या नमस्कार आपको, अभी
1: नमस्कार रिया, श्रोताओं को भी नमस्कार और आदाब। संक्षिप्त समाचारों में आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। शुरुआत करते हैं स्थानीय खबरों के साथ। 30 जुलाई को ऑनलाइन जारी एक रिपोर्ट में फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन ने बताया कि अप्रैल से जून के बीच उसने धोखाधड़ी और मनी लॉन्डरिंग के मामलों में 47 नई जाँच शुरू की है और 14 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस अवधि में कुल 780 शिकायतों की समीक्षा की गई। FCC ने मॉरिशस में साइबर और ऑनलाइन धोखाधड़ी में भारी बढ़ोतरी दर्ज की। इनमें मुख्य रूप से व्हाट्सएप स्कैम्स, फर्जी निवेश वेबसाइट और बैंक के डेटा की चोरी शामिल हैं। अदालती कार्रवाई की अगर बात करें तो कोर्ट ऑफ असाइजेस जोसेफ जैक्सन लुई को 8 साल की कैद और 25,000 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। उन्हें बिक्री के उद्देश्य से 400 ग्राम से अधिक हशीश रखने का दोषी पाया गया है। अदालत ने ये फैसला शुक्रवार 7 अगस्त को सुनाया। ऑनलाइन जारी एक और रिपोर्ट स्टैटिस्टिक्स मॉरिशस की है। इस संस्था ने शुक्रवार को मॉरिशस की अर्थव्यवस्था की उत्पादकता और प्रतिस्पर्धात्मकता पर अपनी वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित की है, जो साल 2015 से 2025 की अवधि को कवर करती है। इस रिपोर्ट में कारखानों के बंद होने के से पहले दिख रहे रुझान का पहला आधिकारिक आकलन प्रस्तुत किया गया है। और विदेश स्तर पर मध्य पूर्व युद्ध के बीच सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान ने एक ऐतिहासिक रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते को नेटो शैली बताया जा रहा है, जिसमें एक देश पर हमला होने पर 3 देशों पर हमला माना जाएगा। विश्लेषकों का कहना है कि ये नया सुरक्षा गठबंधन आक्रामक ईरान को रोकने, अमरीका पर घटती निर्भरता को पूरा करने और इसराइल को संदेश देने के उद्देश्य से किया गया है। और अंत में मौसम का हाल। आम हालत, पूर्व की ओर से बादलों का एक झुंड और अस्थिर हवाओं के कारण हमारे स्थानीय मौसम प्रभावित हो रहा है। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान, आज सुबह पूर्वीय ढलानों तथा ऊंचे इलाके पर बादलों के घेराव के साथ बारिश होगी। आज सुबह ही ऊंचाई पर बारिश के चलते कोहरा भी छाया रहेगा, जबकि दिन के दौरान ऊंचे इलाके पर थोड़े से बादल घिराएंगे और रह रहकर वर्षा होगी। रात के दौरान पूर्व, दक्षिण और सेंट्रल प्लाटो पर बरसात होगी। हवा पूर्व दक्षिण पूर्व की ओर से 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी, जिसके झोंके 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकते हैं। प्रवाह रेखा के उस पर लगभग 3 मीटर वाली लहरें उठेंगी, अतः दूर समंदर में न जाने की मांग की जाती है, खासकर दक्षिणी पश्चिमी लगूनों के उस पार। अगर तापमान के बारे में बात करें तो सेंट्रल प्लेटो पर न्यूनतम तापमान 16 से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा और अधिकतम तापमान 23 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच। उधर तटवर्तीय इलाके पर न्यूनतम तापमान 20 से 23 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा और अधिकतम तापमान 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच। आज सूर्योदय 6:35 पर

شك منها بل هم منها عمون وقال الذين

0: मज़ीद सामीन, आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान रहमतुल्लाह अलैह का बचपन बड़ी अहमियत का हामिल था। कम सीनी यानी बचपन और कम उम्री में होशमंदी और कुव्वत हाफिज़ा का ये आलम था कि साढ़े चार साल की नन्ही सी उम्र में कुरान मजीद नाज़िरा यानी देख कर मुकम्मल पढ़ने की नेमत से बारियाब हो गए। छः साल के थे कि रबीउल अव्वल के मुबारक महीने में मिंबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जरवा अफरोज होकर मीलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजू पर एक बहुत बड़े इज्तिमा में नहायत पुरमग़्ज़ तकरीर फरमा कर उलमाए कराम और मशाइख़ आज़म से तहसीन व आफरी की दाद वसूल की। जब कभी किसी खातून का सामना होता तो फौरन नज़रें नीची करते हुए सर झुका लिया करते। सात साल के थे कि माह रमज़ान में रोज़े रखने शुरू कर दिए।
1: मैं

मज़ीद सामीन, इमाम अहमद रज़ा ख़ान रहमतुल्लाह अलैह ने सिर्फ एक माह में कुरान हिफ्ज कर लिया। जनाब सैयद अय्यूब अली साहब रहमतुल्लाह अलैह का बयान है कि एक रोज़ आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाया कि बाज़ नावाकिफ़ हज़रात मेरे नाम के आगे हाफिज़ लिख दिया करते हैं, हालांकि मैं इस लकब का अहल नहीं हूँ। सैयद अय्यूब अली साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने उसी रोज़ से दौर शुरू कर दिया जिसका वक्त गालिबन इशा का वज़ू फरमाने के बाद से जमात कायम होने तक मखसूस था। रोज़ाना एक पारा याद फरमा लिया करते थे, यहाँ तक कि तीसवीं रोज़ तीसवां पारा याद फरमा लिया। मेरे

0: मोहब्बत की।
1: मोहतरम सामीन, इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इमाम अहमद रज़ा ख़ान रहमतुल्लाह अलैहि, आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैहि, इश्क मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सरतापा नमूना थे। आप रहमतुल्लाह अलैहि का नातिया दीवान हदायके बख्शिश शरीफ इस अम्र का शाहिद है। आप रहमतुल्लाह अलैहि की नोके कलम बल्कि गहराई कल्ब से निकला हुआ हर मिसरा मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आप रहमतुल्लाह अलैहि की बेपायां अकीदत और मोहब्बत की शहादत देता है। आप रहमतुल्लाह अलैहि ने कभी किसी दुनियावी ताजदार की खुशामद के लिए कसीदा नहीं लिखा, इसलिए कि आप रहमतुल्लाह अलैहि ने हुजूर ताजदार रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और ग़ुलामी को दिलो जान से कबूल कर लिया था और इसमें मर्तबाए कमाल को पहुँचे हुए थे। इसका इजहार आप रहमतुल्लाह अलैहि ने एक शेर में इस तरह फरमाया, इन्हें जाना इन्हें माना न रखा गैर से काम, इन्हें जाना इन्हें माना न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया।

मोहतरम सामीन, जनाब सैयद अयूब अली शाह रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक मरतबा आल हज़रत रहमतुल्लाह अलैह पीलीभीत से बरेली शरीफ बजरिया रेल जा रहे थे। रास्ते में नवाबगंज के स्टेशन पर, जहां गाड़ी सिर्फ 2 मिनट के लिए ठहरती है, मगरिब का वक्त हो चुका था। आप रहमतुल्लाह अलैह ने गाड़ी ठहरते ही तकबीर इकामत फरमा कर गाड़ी के अंदर ही नियत बांध ली। गालिबन 5 शख्सों ने इक्तिदा की, उनमें मैं भी था, लेकिन अभी शरीक जमात नहीं होने पाया था कि मेरी नज़र गैर मुस्लिम गार्ड पर पड़ी, जो प्लेटफॉर्म पर खड़ा सब्ज झंडी लहरा रहा था। मैंने खिड़की से झांक कर देखा कि लाइन क्लियर थी और गाड़ी छूट रही थी, मगर गाड़ी न चली और हुजूर आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने बइत्मीनान तमाम बिला किसी इज़्तिराब के तीनों फ़र्ज रकातें अदा कीं और जिस वक्त दाएं जानिब सलाम फेरा था, गाड़ी चल दी। मुक्तदियों की ज़बान से बेसाख्ता सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह निकल गया।

मोहतरम सामीन, आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी वफ़ात से 4 माह 22 दिन पहले ख़ुद अपने विसाल की खबर दी थी। 25 सफ़र अल-मुज़फ़्फ़र 1340 हिजरी मुताबिक 28 अक्टूबर सन 1921 को जुम्मतुल मुबारक के दिन ऐन अज़ान जुम्मे के वक्त आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत वली नियामत अज़ीमुल बरकत अज़ीमुल मर्तबत परवाना शम्मे रिसालत मुजद्दिद दीन व मिल्लत हामी सुन्नत माही बिदत आलिम शरीयत पीरे तरीकत बाईस खैर बरकत हज़रत अल्लामा मौलाना अलहाज अलहाफिज़ अलकारी शाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान रहमतुल्लाह अलैह ने दाइमी अजल को लब्बैक कहा। और आज हम ऐन 25 सफ़र अल-मुज़फ़्फ़र में हैं, यानी आज ही के दिन आला हज़रत का विसाल हुआ था। उनका उर्स शरीफ हमारे जज़ीरे की मुख्तलिफ मस्जिदों में मनाया जा रहा है। बिलखसूस आज सुबह 10 से 1 बजे तक सुन्नी रज़वी सोसाइटी इंटरनेशनल आला हज़रत का उर्स शरीफ सुन्नी अलिया मस्जिद और सुन्नी रज़वी अकादमी की तरफ से पोर्ट्रिस में मनाया जा रहा है। इस मौके पर कई नामवर उलमा शिरकत फरमाएंगे। सामीन मोहतरम, आला हज़रत का मज़ार पुर अनवार बरेली शरीफ में आज भी ज़ियारत गाह ख़ास व आम है। अल्लाह अज़्ज़ल की उन पर रहमत हो और उनके सदक़े हमारी बेहिसाब मग़फ़िरत हो, आमीन सुम्मा आमीन। मौला करीम से दुआ है कि वो तमाम अहले ईमान को अच्छी सेहत और तंदुरुस्ती अता करे, जो बीमार हैं उन्हें शिफा बख्शे, आमीन। इन्हीं दुआया करीमात के साथ आइए इमाम अहमद रज़ा ख़ान रहमतुल्लाह अलैह की शान में ये कलाम समाअत करते हैं। इसी के साथ हम रुख़्सत की इजाज़त तलब करते हैं, अल्लाह ने चाहा तो समीर आपकी खिदमत में फिर हाजिर होगा। अभी के लिए हमें इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।

94.6 98.2 MHz మీద RM3

0: कसा काय मंडळी
1: द बेस्ट सॉन्ग्स ऑन द रेडियो. दिस इज माय ओनली फेवरेट स्टेशन
2: RM3 मनोरंजन रेडियो.

94.96 98.2 आप सुन रहे हैं RM3। भक्ति में शक्ति, भक्ति में शक्ति। समस्त श्रोताओं को नीतूषा का करजोड़ प्रणाम। आशा करती हूँ कि आप सब कुशल मंगल हैं श्रोताओं, और इस समय आप रेडियो मनोरंजन के साथ जुड़े हुए हैं भक्ति में शक्ति कार्यक्रम में। आइए श्री गणेश करते हैं।

श्रोताओं, जैसे कि हम सबको पता है कि यह मास बहुत ही पवित्र है, भक्ति और शिव कृपा का पवित्र महीना। सावन मास कहे या फिर श्रावण मास, हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र और शुभ माना जाता है। यह मास भगवान शिव समर्पित है और माना जाता है कि इस दौरान की गई सच्ची भक्ति, जप, तप, व्रत और सेवा का फल अनेक गुना बढ़कर मिलता है। सावन के हर सोमवार का अलग अलग ही महत्व होता है। इस दिन भक्त शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र और धतूरा वगैरह अर्पित करके ओम नमः शिवाय का जप करते हैं और महादेव का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं।

सावन के आते ही प्रकृति भी जैसे भक्ति के रंग में रंग जाती है। हरियाली से धरती का आंचल सज उठता है, रिमझिम बारिश की बूंदें मन को शांति देती है और हर तरफ एक नई ऊर्जा का एहसास होता है। ये महीना हमें याद दिलाता है कि जैसे प्रकृति अपने आप को नया रूप देती है, वैसे ही हमें भी अपने विचारों, व्यवहार और जीवन को पवित्र बनाना चाहिए।

पौराणिक कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन के समय निकले विष को भगवान शिव ने अपने कंठ में धारण किया था, जिससे उनका कंठ नीला हो गया था और वे नीलकंठ कहलाए। उनकी तपती अग्नि को शांत करने के लिए देवताओं ने उन पर जल अर्पित किया। इस परंपरा के रूप में आज भी सावन के महीने में शिवलिंग पर जलाभिषेक किया जाता है।

0: श्रोताओं, सावन हमें सिर्फ पूजा करना ही नहीं बल्कि दया, करुणा, सत्य, विनम्रता और सेवा का महत्व भी सिखाता है। महादेव बहुत ही भोले हैं, वे भक्तों की भावना देखते हैं, ना कि उनकी संपत्ति। सच्चे मन से की गई एक छोटी सी प्रार्थना भी उन तक जरूर पहुंचती है।
1: भक्ति में शक्ति, भक्ति में शक्ति।

0: इस पवित्र महीने में रुद्राभिषेक, महामृत्युंजय मंत्र का जप, शिव चालीसा का पाठ, ओम नमः शिवाय का निरंतर स्मरण जीवन में आत्मिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा भर देता है। सावन का संदेश है कि हम अपने अंदर के अहंकार, क्रोध, ईर्ष्या और द्वेष को त्याग कर प्रेम, दया और क्षमा को अपनाएं।
1: महादेव सा देव जगत में

श्रोताओं, आइए इस पवित्र सावन मास में भगवान भोलेनाथ के चरणों में अपनी श्रद्धा अर्पित करते हुए प्रार्थना करें कि हे देवाधिदेव महादेव, हमारे जीवन से अंधकार को दूर करके ज्ञान का प्रकाश दीजिए। हमें सत्य के मार्ग पर चलने की शक्ति, सेवा का भाव, पवित्र विचार और सबके प्रति प्रेम देने की कृपा करें। हर हर महादेव। प्रणाम। शुभ दिन।

麦田裹挟清风，暖意扑面而来，趁着周日清闲，把心绪放空，奔赴云端自在。一起来听周深带来的抒情歌曲《向云端》。

云端卸下烦闷，回归寻常日子。一年四季，平淡光景皆是温柔。送上黄耀明带来的经典粤语歌曲《四季歌》。

云端卸下坟梦，体味四时烟火，思绪去往广阔草原，悠扬牧歌悠然响起，请欣赏天边的牧歌。

绵长木柯缓缓飘荡，抬眼望向清澈天际，心际也随之开阔。请听布仁巴雅尔带来的天边。

旷野风光过后，婉转国风缓缓登场，缱绻柔情婉转吟唱，有请卷珠帘。

0: चलिए सुनते हैं संक्षिप्त समाचार। आपसे याचना नमस्कार।
1: नमस्कार नीलमणि, सभी सुनने वालों को भी नमस्कार। सुनिए संक्षिप्त समाचार। 30 जुलाई को ऑनलाइन जारी एक रिपोर्ट में फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन ने बताया कि अप्रैल से जून के बीच उसने धोखाधड़ी और मनी लॉन्डरिंग के मामलों में 47 नई जांच शुरू की हैं और 14 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस अवधि में कुल 780 शिकायतों की समीक्षा की गई। एफसीसी ने मॉरिशस में साइबर ऑनलाइन धोखाधड़ी में भारी बढ़ोतरी दर्ज की है। इसमें मुख्य रूप से शामिल है व्हाट्सएप स्कैम्स, फर्जी निवेश वेबसाइट्स, बैंक के डेटा की चोरी। ऑनलाइन जारी इस रिपोर्ट में स्टैटिस्टिक्स मॉरिशस ने इस पर एक समीक्षा की। संस्था ने शुक्रवार को मॉरिशस की अर्थव्यवस्था की उत्पादकता और प्रतिस्पर्धात्मकता पर अपनी वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित की, जो 2015 से 2025 की अवधि को कवर करती है। इस रिपोर्ट में कारखानों के बंद होने से पहले से दिख रहे रुझान का पहला आधार एक आंकलन प्रस्तुत किया गया है। महामारी के दौर को छोड़कर भी वस्त्र उद्योग, कपड़ा उद्योग में रोजगार में भारी गिरावट दर्ज की गई है। अदालती कार्रवाई की अगर बात करें तो कोर्ट ऑफ असाइज़ जोसेफ जैक्सन लुई को 8 साल की कैद और 25,000 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई गई है। उन्हें बिक्री के उद्देश्य से 400 ग्राम से अधिक हशीश रखने के लिए दोषी पाया गया। अदालत ने ये फैसला शुक्रवार 7 अगस्त को सुनाया। और ताइवान के आसपास चीन की सैन्य गतिविधियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने रविवार सुबह बताया कि उसने अपने हवाई और समुद्री क्षेत्र के पास चीनी सेना के 4 विमान, 6 युद्धपोत और 9 आधारिक जहाजों की मौजूदगी का पता लगाया है, जिसमें से 2 विमानों ने मध्य रेखा पार कर ताइवान के वायु रक्षा पहचान क्षेत्र में घुसपैठ की है।

0: तक की खबरें थोड़ी देर में शोक समाचार। सिबारत लेन और लिहुद नंबर एक वाकवा में सिबारत लेन और लिहुद नंबर एक वाकवा में 85 साल की 85 years old की श्रीमती मिमिन पात्रों पैदाशी नाम झूलन की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी आज दोपहर ढाई बजे उनके मकान सिबारत लेन उलीहुद नंबर एक वाकवा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए थामा मेल की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 2:30 PM। नंबर 14 गायतों मार्टिन स्ट्रीट थोंगबा पोर्टलुई में 14 गास्टों मार्टिन स्ट्रीट थोंगबा पोर्टलुई में 74 साल की 74 years old की श्रीमती गंगाराम बिदवंती जो फेना के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी आज सुपहर 3 बजे उनके पति गंगाराम दादा के मकान 14 गास्टों मार्टिन स्ट्रीट थोंगबा पोर्टलुई से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बामौशों की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे at 3 PM। Quatre Beaux Road, Bon Accueil, 83 साल की 83 years old की श्रीमती परमावती भिकारी पैदाशी नाम रामदयाल और जो सत्या के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी उनकी मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी आज दोपहर 2 बजे उनके मकान कथबो रोड बोनाकाई से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए लावोंचा की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 2 PM। शोक में डूबे इन परिवारों के प्रति हमें हमदर्दी है।
1: Center 95.5 North South 95.6 East West 98.2.
2: You are listening your RM3 Manoranjan Radio. Manoranjan Radio.
3: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.

जहां 12:09 हुए हैं। नमस्कार जी, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब और दिल से प्यारी सी गुड आफ्टरनून आप सभी को। आज संडे का दिन और 9 अगस्त 2026 और रविवार की इस सुनहरी दोपहर में चेहरे पर मुस्कान है, दिलों में उमंग है और कानों में बसने वाली सुरीली धुनों का मौसम है। तो फिर देर किस बात की, आप सुन रहे हैं और एम फ्री रेडियो मनोरंजन और मैं हूँ देवी ना आपके संग लेकर आई हूँ एक ऐसा सफर जहाँ रास्ते हैं संगीत के, मंजिल है मुस्कान की और साथी हैं हमारे प्यारे प्यारे नगमे और साथ में हमारे प्यारे लिसनर्स। जा दोस्तों, सुहाना सफर जहाँ हर गीत एक याद है, हर धुन एक एहसास है और हर अंतरा दिल की कोई पुरानी कहानी कह जाता है। तो आवाज़ थोड़ी सी तेज कर लीजिए अपने रेडियो का, दिल की खिड़कियाँ खोल दीजिए और अपने रविवार को बना दीजिए थोड़ा और मस्त, थोड़ा और रंगीन और बिल्कुल सुहाना।

जहाँ ये गाना आपने सुना किशोरदा की आवाज़ में, ना कोई दिल में समाया, ना कोई पहलू में आया, जाके भी पास रही तुम भी। और ये इस गाने को सुनकर आपको किसकी याद आती है, किसे अपने की याद आती है? हमें तो शशि कपूर साहब की याद आ गई है। कितने रोमांटिक अंदाज था उनका, कितने वो हैंडसम थे। और आज का जो सुहाना सफ़र है थोड़ा खास, थोड़ा रोमांटिक, थोड़ा जो शरारती है, थोड़ा नॉस्टैल्जिक, क्योंकि आज हम चलेंगे हिंदी सिनेमा के उस खूबसूरत सफ़र पर जहाँ शशि कपूर जी की एक मुस्कान में रोमांस था, आंखों में शरारत थी और पर्सनालिटी में ऐसी एलिगेंस कि पर्दे पर आते ही नज़र ठहर जाती थी। तो हमारी छोटी सी कोशिश कि हम किसी कलाकार पर एक दो गाने चलाएंगे और बारी बारी से अगर आपके डेडिकेशंस भी आ जाएंगे, अगर आपके कुछ रिक्वेस्ट सॉन्ग भी आ जाएंगे तो हम चला देंगे। साथ में हमारे प्लेलिस्ट में इतने प्यारे प्यारे गाने हैं ना, वो क्या कहें, तो बस आपके नाम करते जाएंगे। और जी हाँ दोस्तों, आज का हमारा खास सफ़र है आप सबों के लिए और साथ में शशि कपूर साहब के फैंस के लिए। शशि कपूर साहब पृथ्वीराज कपूर जी के सुपुत्र, राज कपूर साहब के भाई साहब, छोटे भाई। तो बस सिलसिला वाला गाना आप सबों के नाम।

0: सुहाना सफर, सुहाना सफर।
1: जहाँ जालिम का नाम है शशि कपूर साहब। हाँ जी, एक ऐसा नाम जिसने हिंदी सिनेमा को सिर्फ अभिनय नहीं दिया बल्कि दिया चार्म, ग्रेस, रोमांस और एक अलग ही अंदाज। तो वॉल्यूम थोड़ा बढ़ाइए और हमारे साथ उस दौर में जहाँ गीत थे, मोहब्बत थी और शशि कपूर साहब की वो प्यारी सी मुस्कान थी, आप हमारा साथ दीजिए सुहाना सफर प्रोग्राम में। जैसे हमें बताया कि शशि कपूर साहब पृथ्वीराज कपूर के

परिवार से आने वाले इस सितारे ने बचपन से ही अभिनय की दुनिया को बहुत करीब से देखा। पिताजी थे पृथ्वीराज कपूर साहब, बड़े भाई राज कपूर साहब और उनके जो भाई आए भाई हैं शमी कपूर साहब, और इसी शानदार कपूर परिवार की विरासत को आगे बढ़ाते हुए शशि कपूर जी ने अपनी एक अलग पहचान बनाई। लेकिन उनकी सबसे खास बात, उन्होंने कभी किसी की नकल नहीं की, ये बहुत खास बात है। उन्होंने अपना एक अलग अंदाज बनाया, बड़े सॉफ्ट स्पोकन हीरो, रोमांटिक हीरो, बहुत शांत थे, सोफिस्टिकेटेड हीरो। साथ में उस समय ना जैसे उनका ड्रेस कोड हुआ करता था, और कभी कभी बिल्कुल मस्त। और यही कारण है कि उनकी फिल्मों का संगीत आज भी दिल को छू जाता है। तो आइए, शुरुआत तो हमने कर दी इन प्यारे प्यारे गानों के साथ, तो प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। और जो गाना हम चलाने वाले हैं ना, उस गाने का क्या कहना, बहुत से लोग इस गाने को पसंद करते हैं। और इस गाने, इस फिल्म के लिए बेस्ट फीमेल प्लेबैक के लिए मिला था, उस समय उसको कहते थे बेबी श्रेष्ठा, हाँ जी, तो सुषमा श्रेष्ठ, और एक्चुअली उनका पूरा नाम है पूर्णिमा, जो फिल्मों के लिए गाती हैं। तो फिल्म है आगरी लग जा, और ऑडी बर्मन का संगीत था, और लिरिक्स साहिर लुधियानवी का। और इस फिल्म में नज़र आए थे शशि कपूर साहब, साथ में थी ब्यूटीफुल शर्मिला टैगोर, शत्रुघ्न सिन्हा, ओम प्रकाश। और फिल्म की कहानी तो आप जानते ही हैं, लव स्टोरी थी। और साथ में ये फिल्म जो थी ना, आ गले लग जा, बिकेम ए बॉक्स ऑफिस हिट इन 1973। ठीक है, तो बस ये गाना जो है जाएगा स्पेशली विमला जी के लिए, अब शुमें खुए, तो बेटे अक्षय के लिए, साथ में है बेटी भावना, दामाद है उनकी जो बहू है, और साथ में अपने लेट पति को याद करती हैं चांद जी को। तो बस ये गाना आपके लिए विमला जी।

साढ़े बारह बज चुके हैं और अब धर्मपुत्र 1961 की क्लासिक हिंदी सोशल ड्रामा फिल्म और इसको डायरेक्ट किया था यश चोपड़ा जी ने और प्रोड्यूस बाय बी आर चोपड़ा. और ये जो फिल्म थी ना वो बेस्ड था ऑन आचार्य चतुरसेन हिंदी नोवेल ऑफ द सेम नेम. सो इसमें था कम्युनलिज्म, हिंदू फंडामेंटलिज्म और जो पार्टीशन ऑफ इंडिया था. इसमें शशि कपूर साहब का वो पहली मूवी थी एज एन एडल्ट लीड एक्टर. तो 1961 में आई थी ये मूवी और साथ में शशि कपूर के साथ दिखी थी माला सिन्हा जी, रहमान, अशोक कुमार और साथ में निरूपा रॉय और म्यूजिक डायरेक्टर रहे एन दत्ता. और ये जो फिल्म है ना लोगों को बहुत ही पसंद आया, तो इस फिल्म के गाने भी बहुत पसंद आए. और ऐसे में एक बहुत ही प्यारा सा गाना आशा जी की आवाज़ में, और ये गाने इस गाने की मांग की है. हमेशा की तरह प्यारे प्यारे गीतों की मांग करती हैं श्यामा रघुनंदन जी ऑफ कॉन्कोप. सो ऐसे गाने सुनकर ना उनके बीते दिन जो है याद दिलाते हैं, बहुत सी यादें आ जाती हैं, हमारी जवानी की यादें आ जाती हैं, बचपन की यादें आ जाती हैं, कभी कभी जो दर्द भरे दिन भी या फिर खुशियों के दिन भी याद आ जाते हैं. तो जब भी अकेले होते हैं ना बहुत सी यादें ताज़े हो जाती हैं. और साथ में यहाँ पर जब भी हम कुछ गाने लेकर आते हैं सुहाना सफ़र प्रोग्राम में, हमारा मकसद है कि आपके कुछ हमारे आपके दिलों में किसी कोने में जो यादें हैं ना वो ताज़े हो जाए. सो बस ये गाना हम नाम जोड़ेंगे यहाँ पर श्यामा जी के साथ साथ. इसमें नंदिनी ओकलू आप हमें सुन रही हैं, आपको हाय है नंदिनी जी. विश्वानी दुखी है वीना रामफल, साथ में भैया राम प्रकाश के लिए, भैया जय प्रकाश के लिए और साथ में है भाभी जी और केशव युधीश और सभी परिवार के लिए ये गाना हो जाए.

सफर 12:42 मिनट हुए हैं और आज संडे 9 अगस्त 2026 और शशि कपूर साहब की बात हो रही है तो हम किसी और की बातें क्यों करें भाई, उसकी बातें करके ना उनका जो हैंडसम सा चेहरा है हमारे आंखों के सामने आ जाती है, है ना। और शशि कपूर साहब का तो अंदाज ही अलग था और जैसे हमने कहा वो इस शशि कपूर साहब का रोमांस कुछ अलग था दोस्तों, न ज़्यादा दिखावा न ज़्यादा बनावटीपन, बस एक मुस्कान, एक नज़र और सामने वाला कहें बस दिल गया हाय। उनकी जोड़ी कई खूबसूरत अभिनेत्रियों के साथ खूब पसंद की गई, शर्मिला टैगोर, राखी हेमालिनी, परवीन बाबी, जिनत मान, नंदा और बाकी जितने कलाकार थे, मगर इन लोगों के साथ उनकी ज़्यादा फिल्में बनी और हर अभिनेत्री के साथ उनका अदा अंदाज जो था ना अलग अलग दिखाई देता था। कभी भोला भाला प्रेमी, कभी चार्मिंग बिजनेसमैन, कभी सीरियस कैरेक्टर, तो कभी बिल्कुल शरारती नौजवान। यही वर्सेटिलिटी थी शशि कपूर की। अब सुनते हैं एक और बेहद प्यारा सा गीत, मगर

हाँ पर ना बाबू अनतवा जी का तो बोन के हैं, वे कह रहे हैं उनको शशि कपूर साहब पसंद ही है, परंतु उनको उनके भाई साहब जो हैं राज कपूर साहब ज़्यादा पसंद है। कोई बात नहीं, कपूर साहब के खानदान से हैं वो, तो वे सुनना चाहते हैं मुकेश साहब की आवाज़ में। कुछ शेर सुनाता हूँ मैं, क्या शेर, कौन सा शेर सुनाना वाले हैं? तो बाबू अनतवा जी, आपके लिए और आपके सभी परिवार के लिए, फिल्म है एक दिल 100 अफसाने।

जय ये प्यारा सा गाना खास तौर पर सीता जी के लिए पॉइंटिलास्का उनके भाई बहन के लिए और साथ में ये गाना जाएगा देवयानी जी प्यारे से देवयानी जी ऑफ ग्रीष्मो फ्लाक और ये गाना हमें ले जाएगा 1 बजे के संक्षिप्त समाचार की ओर इसके बाद हमारा प्रोग्राम जारी रखेंगे सुहाना सफर प्रोग्राम देवीना के संग संडे आफ्टरनून लेजी शो

0: फिर सुनते हैं संक्षिप्त समाचार आपसे आशिता। नमस्कार।
1: नमस्कार नीलमणि, श्रोताओं को भी नमस्कार। संक्षिप्त समाचार में आप सभी लोगों का स्वागत है। दुनिया भर में भूखमरी की स्थिति में भले ही मामूली सुधार हुआ है, लेकिन सैकड़ों मिलियन लोग अब भी पर्याप्त भोजन के लिए संघर्ष कर रही है। पिछले महीने खाद्य एवं कृषि संगठन यानी FAO की ओर से जारी विश्व खाद्य सुरक्षा की स्थिति पर रिपोर्ट में ये जानकारी सामने आई है। अफ्रीका में स्थिति विशेष रूप से चिंताजनक बनी हुई है। मध्य पूर्व में जारी युद्ध ने हालात को और गंभीर कर दिया है। दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताने के लिए मॉरिशस के झरने लोगों के पसंदीदा स्थलों में शामिल हैं, लेकिन यहां जाना जोखिम से खाली नहीं है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार पिछले 8 वर्षों में मॉरिशस के झरनों में डूबने से 13 लोगों की जान जा चुकी है। मॉरिशस फायर रेस्क्यू सर्विस और पेशेवर गाइड्स सावधानी बरतने की अपील कर रही है। मॉरिशस फायर रेस्क्यू सर्विस ने बचाव अभियान का एक प्रदर्शन भी दिया, जिसमें डूबने की स्थिति में अपनाए जाने वाले सही तरीकों को दिखाया गया। बचाव कर्मियों का कहना है कि बिना किसी उपकरण या प्रशिक्षण के पानी में कूदकर किसी को बचाने की कोशिश करना खतरनाक हो सकता है और इससे बचाने वाले व्यक्ति की जान भी खतरे में पड़ सकती है। ट्रेनिंग से जुड़े पेशेवरों के अनुसार इन प्राकृतिक स्थलों के प्रति लोगों का बढ़ता आकर्षण अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ उचित तैयारी और सावधानी भी जरूरी है। शिक्षा के क्षेत्र में कुछ नए बदलावों की तैयारी चल रही है, जिनका असर स्कूल पाठ्यक्रम पर पड़ सकता है। नए विषयों को शामिल करने, माध्यमिक स्तर पर विद्यार्थियों के लिए अधिक विकल्प उपलब्ध कराने और तकनीकी शिक्षा की विभिन्न धाराओं को विकसित करने के वास्प के प्रस्तावों पर फिलहाल विचार किया जा रहा है। इन मुद्दों को लेकर संबंधित पक्षों और कैम्ब्रिज के एक प्रतिनिधिमंडल के बीच रणनीतिक बैठक हुई। ये बैठक मीडिया रिव्यू के तहत आयोजित की गई थी। इसका उद्देश्य शिक्षा व्यवस्था को विद्यार्थियों और देश की भविष्य की जरूरतों के अनुरूप बेहतर ढंग से तैयार करना है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दक्षिणी स्पेन के नेबला क्षेत्र में कल दमकल कर्मियों ने जंगल में लगी भीषण आग पर काबू पाने के लिए अभियान चलाया। आग के चलते 340 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना पड़ा। अधिकारियों के अनुसार ये आग कल दोपहर हुएल्वा प्रांत में लगी और देखते ही देखते कम से कम 4000 हेक्टेयर क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लिया। और उधर कनाडा के पश्चिमी हिस्से में स्थित ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत में तेजी से फैल रही जंगल की आग ने कई घरों को नष्ट कर दिया है। हालात को देखते हुए प्रांतीय सरकार ने आपातकाल घोषित कर दिया है। आग के कारण ओकानागन झील के आसपास स्थित इलाकों से 20,000 से अधिक लोगों को अपने घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए मजबूर होना पड़ा है। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हो चला। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। साथ रहिए, बढ़ते हैं शुभ समाचारों की ओर। रूट डू क्लब वाकुआ में 81 साल के 81 years old की श्री वुग्राचन मितु जैन जगदीश के नाम से लोग ज़्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी

0: आज शाम 3:30 बजे उनके घर वाकवा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए फिनिक्स की शमशान भूमि ली जाएगी. क्रिमिशन टुडे एट 3:30 PM. लिस्पिरांस ट्रिबुशे आनंद रोड लिस्पिरांस ट्रिबुशे में 57 साल की 57 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती महालक्ष्मी पुनित पैदाश्राम सालांदी और जिन्हें रेखा के नाम से लोग ज्यादा जानते थे की मृत्यु हो गई है. उनकी अर्थी कल सुबह 10:30 बजे उनके घर लिस्पिरांस ट्रिबुशे से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए वहीं शमशान भूमि ली जाएगी. क्रिमेशन टुमारो एट 10:30 AM. स्कूल लेन कुतेज में 64 साल की 64 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती मानती बिकन पैदाश्रम रामनारायण और जिन्हें मानती के नाम से लोग ज्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई है. उनकी अर्थी कल दिन के 1 बजे उनके पति देवानंद बिकन के घर कुतेज से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए वहीं शमशान भूमि ली जाएगी. क्रिमेशन टुमारो एट 1 PM. कांदा लेन रोज लेन बाउंड्री ट्रेफ रोजिल में 76 साल की 76 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती मिनियामा इरापा पैदाश्रम कॉपेना जिन्हें आती के नाम से लोग ज्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई है. उनकी अर्थी कल दिन के 12:30 बजे उनके घर ट्रेफ रोजिल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए कोदिगौत की शमशान भूमि ले जाएगी. क्रिमेशन टुमारो एट 9:30. शोक में डूबे इन सभी परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है.
1: चौरानवे 95.6 98.2 आप सुन रहे हैं RM3.

किसकी मौत के बारे में सोच रही थी? मेरी? अरे मेरी जिंदगी और मौत तो अब तुम्हारे साथ है, और प्यार करने वाले मौत से डरा नहीं करते।

0: सुहाना सफर
1: जहाँ सुहाना सफर का दूसरा घंटा है, सेकंड आवर ऑफ सुहाना सफर, 1:12 हुए हैं। आज है संडे 9 अगस्त 2026। सो आप लोग क्या कर रहे हैं आज? बहुत से लोग घर पर होंगे, बस आराम कर रहे होंगे। कुछ लोग घर का काम काज में बिजी होंगे, क्योंकि एक ही दिन होता है जब हम काम से होकर घर पर रहते हैं आराम से। मैं जब भी घर पर होती हूँ ना, जब भी मौका मिलता है तो बस कुछ आराम करती हूँ, कुछ काम करती हूँ, कुछ टीवी देखती हूँ, छोटा छोटा जो टुकड़ा फिल्म देखती हूँ, फिर से उठकर काम करते हैं। तो बस ऐसे ही आराम

आराम से जिंदगी का जो सफर है ना धीरे धीरे चलते रहेगा क्योंकि यू डोंट हैव टू बी सो एवरी टाइम फास्ट इन लाइफ क्योंकि जिंदगी की रफ्तार जो है बहुत तेजी से जा ही रही है मगर जब भी समय मिले ना तो बस थम जाइए रुक जाइए और देखना कि बस ये सब काम काज ये सब इतने स्ट्रेस देकर ये सब हमें कहाँ ले जाएगा मगर आराम भी ज़रूरी है मेरे दोस्त और रविवार का दिन जो है संडे का दिन जो होता है आराम करने की चीज़ ही होती है मोहब्बत बड़े काम की चीज़ है जैसे हम इस गाने में अगले गाने में हम सुनाएंगे आपको वैसे अगला गाना जो है अभी के लिए फ़िलहाल और आपको बता देते हैं हम बात कर रहे हैं शशि कपूर साहब पर पिक्चराइज कुछ रोमांटिक बहुत ही प्यारे प्यारे गाने और इतने लोगों की फरमाइश आ रही हैं डेडिकेशंस आ रहे हैं उन पर और उनको वो कह रहे हैं कि उनको बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि शशि कपूर साहब पर पिक्चराइज गाने उनको सुनना अच्छा लगता है मगर सभी गाने रेयरली उनको सुनाई देता है रेडियो पर कोई बात नहीं हम लेकर आए हैं ना तो यहाँ पर ए यार सुन यारी तेरी और इसमें आवाज़ें होंगी रफ़ी साहब की साथ में आशा जी की और शैलेंद्र सिंह साहब की फिल्म है सुहाग 1979 की मूवी और इसमें नज़र आए थे शशि कपूर साहब ऑफ कोर्स और अगर हम इससे पहले जो गाना आपको सुनाया रात बाकी बात बाकी फिल्म नमक हलाल और उसमें नज़र आए थे शशि कपूर साहब साथ में बिग बी बच्चन साहब परवीन बाबी और उसमें थी स्मिता पाटिल वैसे अगर दोस्ती देखी जाए शशि कपूर साहब और अमिताभ जी की तो बहुत सी फिल्मों में एक साथ भी नज़र आए थे जैसे दीवार सिलसिला त्रिशूल कभी कभी काला पत्थर नमक हलाल शान अकेला सुहाग ईमान धर्म दो और दो पाँच एहसास और एक दो फिल्मों में भी और उन इस जोड़ी को बच्चन साहब साथ में शशि कपूर साहब को सिनेमा प्रेमी ने बहुत ही पसंद किया और इनके गाने भी आज लोग पसंद करते हैं तो ये जो अगला गाना है अब चलेगा हमारे प्यारे से जो हमारे जो दोस्त हैं ना मोहताज ब्लॉश के नवीन भाई के लिए सुहाग मूवी का गाना है और साथ में ये जाएगा जैसे कहेंगे ना नवीन जी आशा जी की ज़बरदस्त फ़ान है वे तो सभी गाने जो वे मांगते हैं हमेशा आशा जी की आवाज़ में होती है तो ये जो गाना है आपने चुना ज़बरदस्त गाना है साथ में हमारे जो यार है ना शुमे गई कि जो करुणा है हेलो करुणा और साथ में है उनके जो हबी है राजेश वे एक साथ आज क्वालिटी टाइम बिता रहे हैं काम काज छोड़कर सभी लोग बिजी होते हैं आज एक साथ बैठकर कुछ आराम कर रहे हैं रेडियो सुन रहे हैं हमें तो हेलो टू एवरीवन वहां पर और साथ में उनकी जो मम्मी जी श्यामा जी हैं उनको भी हम हेलो कहेंगे तो आप सभी के लिए करुणा जी पूरे परिवार के लिए और राजेश और करुणा जी साथ में तांबिता ये प्यार बढ़ेगा और हमारी ओर से यारी जो है पक्की है तो बस नवीन जी आपके लिए

सी माता जी के लिए, माता जी प्रणाम आपको, आप सुन रही हैं और ये गाना जाएगा उनकी जो भाई हैं नंद राव और साथ में बहन है आरती जो स्विट्जरलैंड में है, तो ये जो गाना है आपके लिए। और वैसे कहते हैं ना, कुछ ऐसे गाने होते हैं जो उम्र के साथ पुराने नहीं होते बल्कि हर बार सुनने पर और भी जवान लगते हैं। तो ये है रफ़ी साहब की आवाज़ में आप सबों के लिए, और अगर आपको ये गाना है पसंद है तो आपके लिए

फ्लक से है तो ये और उनके परिवार के लिए। और ये जो गाना सुनकर ना हमें एक और गाना याद आ गया, तोता मैना की कहानी तो पुरानी पुरानी हो गई ना। और वैसे शशि कपूर साहब की बात हुई तो हम कैसे भूल सकते हैं वो ये आगले लग जा मूवी, दीवार, त्रिशूल, प्यार का मौसम, शान, सिंदूर और हसीना मान जाएगी, काला पत्थर और धीरे धीरे कितने जो फिल्म में हैं बहुत लोगों को पसंद है, वे आते थे इतने जैसे स्टाइल में कि लोग हक्के बक्के रह जाते थे। शशि कपूर, शम्मी कपूर साहब, राज कपूर साहब ये सब भाई थे मगर उनका अंदाज अलग अलग था। तो बस शशि कपूर पर पिक्चर आज कुछ गाने चला रहे हैं।

0: सुहाना सफर
1: है ना एक डाल पर तोता बोले तो बस अगर ये गाना हम सुन रहे हैं तो ये पसंद थी नीलमला जी की

चलिए अब एक बर्थडे विश की ओर। और जितने लोग आज है 9 अगस्त, अगर आप अपना बर्थडे मना रहे हैं तो हैप्पी बर्थडे टू यू, गॉड ब्लेस यू ऑल, हेल्थ वेल्थ आपको सब कुछ मिले जो आप डिजर्व करते हैं ज़िंदगी में। और हमेशा हैप्पी रहिए, खुश रहिए अपनों के साथ, दोस्तों के साथ। और अगर गम भी आए तो उनको गोली मारिए और बस आगे चलते रहिए ज़िंदगी में, और सुहाने सफ़र में हमेशा हमारा साथ देते रहें। तो बस ये जो है विश्वानी दुबन जी की ओर से वाकवा से हैं, और ये जो है गाना जाएगा उनकी जो बहन है इंदिरा शारदा, सहेली नीला प्रतिभा शोभा और गीता का जथर के लिए। तो बस ये गाना आपके लिए, और साथ में जितने लोग अपना बर्थडे मना रहे हैं हम कह रहे हैं, तो ये गाना आपके लिए, आई मिलन का, आई मिलन की रात। और यहाँ पर है आई मिलन की बेला वाला गाना, तो कोई बात नहीं ये चलाते हैं आपके लिए बाद में। और ये जो अगला गाना होगा हसीना मान जाएगी, चले थे साथ मिलकर, चलेंगे साथ मिलकर, तुम्हें रुकना पड़ेगा मेरी आवाज़ सुनकर। बस ये गाना आपके लिए।

जहाँ शशि कपूर साहब के साथ दिखी थी द प्यार द ब्यूटीफुल बबीता, और ये गाना जाएगा माला जी के लिए, रेवे जोंपा की हैं साथ में उनके जो परिवार हैं सत्यम, शिव, किरण, कनील, केविन, कनिष और कबीर।

0: RM3 Radio. Radio.
1: एक रास्ता है जिंदगी, ये गाना किसको पसंद नहीं है? मोटरसाइकिल पर चलते शशि कपूर साहब. काला पत्थर मूवी का गाना है ये, जाएगा रोजी के साजिद जी के लिए. साजिद जी को आदाब कहेंगे और साथ में कनाडा की उनकी जो सहपाठी हैं सरोवर जी, कनाडा की हैं, सुन रही हैं. थैंक यू ये गाना आपके लिए.

0: RM3 Radio.
1: सुहाना सफर जासवाना सफर प्रोग्राम में थमेंगे नहीं। दोपहर जैसे जो है घड़ी बता रही है कि जो दोपहर है अपने रंग में आ चुके हैं, लेकिन सुहाना सफर अभी कहाँ रुकने वाला है, थमेगा नहीं। अभी तो संगीत का मजा बाकी है, अभी तो मस्ती की उड़ान बाकी है और अभी तो कई दिलकश नगमे अपना इंतजार कर रहे हैं। तो चाय की एक प्यारी सी चुस्की हो जाए हमारी ओर से। अगर आप लोग चाय पी रहे हैं, कुछ लोग अभी नाश्ता कर रहे हैं, तो बन आप जी और मुस्कान थोड़ी और बड़ी हो जाए और वॉल्यूम थोड़ा और तेज़। हालांकि जो आगे वाला जो गाना आएगा ना, वो गाना सुनकर मन पिघल जाता है। कभी कभी उदास मन वो ऐसे गाने सुनकर ना रो लेता है, मगर और अगर आप खुश हैं तो कुछ ना कुछ तो ऐसे दर्द होगा ही, क्योंकि गाना ही ऐसा है और किशोरदा की आवाज़ हो तो दर्द वाला गाना हो तो बस कौन सा दिल पिघलेगा नहीं। तो बस किशोरदा की आवाज़ में भी मैं प्यार का मौसम तुम बीन जाऊँगा, और यह जो गाना है पिक्चराइज हुआ था ऑन शशि कपूर साहब। और आपको बता देते हैं कि एक दो गानों के बाद 2 बजे के बाद समाचार होंगे 2 बजे, और इसके बाद हम चलाएंगे 90s वाले गाने, एक दो मिक्स गाने होंगे, आप सुनना मत भूलें। और अभी के लिए ये गाना हम दिल से महसूस करें एक साथ। सुहाना सफर प्रोग्राम में देवीना है आपके संग। और ये गाना ऑन रिक्वेस्ट ऑफ बुबासा के हरीश जी, हरीश बाबू जी, और साथ में ये गाना जाएगा उनके खास अनु के लिए। और जितने लोग प्यार में डूबे हुए हैं, ये गाना आपके लिए।

0: RM3 Radio. Radio. Radio.
1: जहाँ दोस्तों ज़िंदगी बहुत तेज़ भागती है, हम काम में व्यस्त रहते हैं, ज़िम्मेदारियों में उलझे रहते हैं, कल की चिंता करते रहते हैं, लेकिन कभी कभी रुक कर आज को भी जी लेना चाहिए। एक कप चाय, एक प्यारा सा गीत, परिवार के साथ कुछ पल, दोस्तों के साथ हंसी, यही तो है ज़िंदगी के असली खजाने। इसलिए आज है संडे, तो थोड़ा आराम, थोड़ा मुस्कुराइए और अपने दिल को भी कहिए आज तेरी पसंद का दिन है। पच्छर सावन बसंत बहार फिल्म सिंदूर, और इसमें नज़र आए थे शशि कपूर साहब, साथ में थी नीलम गोविंदा, और ये गाना किसको पसंद नहीं है। और इस गाने में हम नाम जोड़ते हैं, नंदा जी पाए से हैं, पुनीता गणेश फैमिली और सभी बच्चों के लिए, और ये गाना आप लोग एंजॉय कीजिए एक साथ। साथ में यहाँ पर एक मैसेज आया है, हेलो, मुझे पता नहीं था कि शशि कपूर जी पर प्रोग्राम चल रहा है, ओए होए, लगता है आपको बहुत अच्छा लगता है। ये है राधा मोचिदा से, मगर ये मौका नहीं मिलेगा अब ये गाना जो आप मांग रही हैं, तो इस गाने में आपका नाम जोड़ते हैं। राधा जी सुनते रहिए और इस गाने को का मज़ा लीजिए। 2 बजे के बाद 90s वाले गाने हम चलाएँगे।

हम कहाँ होंगे अभी के लिए 2 बजे के बाद यही होंगे 3 बजे तक कुछ 90s वाले गाने उर्मिला मातोंडकर पर कुछ गाने अगर आपको पसंद है तो आप सुनिएगा ज़रूर और 90s वाले गाने तो खूबसूरत हैं और सुहाना सफ़र प्रोग्राम जारी है मेरे दोस्त

0: ये सुनते हैं संक्षिप्त समाचार अर्शिता के साथ। आपको नमस्कार अर्शिता।
1: नमस्कार हंसिनी, श्रोताओं को भी नमस्कार। संक्षिप्त समाचार में आप सभी लोगों का स्वागत है। मॉरिशस में 16 से 24 वर्ष की उम्र के करीब 1,00,000 युवा रोजाना नशीले पदार्थों का सेवन करती है। ये आंकड़ा शराब के दुरुपयोग और नशीली दवाइयों की लत की रोकथाम और उपचार के क्षेत्र में काम करने वाले गैर सरकारी संगठन डॉक्टर इदरीस गुमानी उपचार केंद्र से सामने आया है। नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर संगठन ने आज 9 अगस्त प्लेनवेयत इलाके की अल अक्सा मस्जिद के सहयोग से नशीली दवाओं के दुष्प्रभावों पर एक जागरूकता सत्र आयोजित किया। इस सत्र का उद्देश्य युवाओं को नशीली दवाओं के सेवन से होने वाले नुकसान के बारे में जागरूक करना और नशे की रोकथाम के महत्व पर जोर देना था। दुनिया भर में भूखमरी की स्थिति में भले ही मामूली सुधार हुआ है, लेकिन सैकड़ों मिलियन लोग अब भी पर्याप्त भोजन के लिए संघर्ष कर रहे हैं। पिछले महीने खाद्य एवं कृषि संगठन यानी FAO की ओर से जारी विश्व खाद्य सुरक्षा की स्थिति पर रिपोर्ट में ये जानकारी सामने आई है। अफ्रीका में स्थिति विशेष रूप से चिंताजनक बनी हुई है। मध्य पूर्व में जारी युद्ध ने हालात को और गंभीर बना दिया है। शिक्षा के क्षेत्र में कुछ नए बदलावों की तैयारी चल रही है, जिनका असर स्कूल पाठ्यक्रम पर पड़ सकता है। नए विषयों को शामिल करने, माध्यमिक स्तर पर विश्वविद्यालयों के लिए अधिक विकल्प उपलब्ध कराने और तकनीकी शिक्षा की विभिन्न धाराओं को विकसित करने के प्रस्तावों पर फिलहाल विचार किया जा रहा है। इन मुद्दों को लेकर संबंधित पक्षों और कैम्ब्रिज के एक प्रतिनिधिमंडल के बीच रणनीतिक बैठक हुई। ये बैठक मीडिया रिव्यू के तहत आयोजित की गई थी। इसका उद्देश्य शिक्षा व्यवस्था को विद्यार्थियों और देश के भविष्य की जरूरतों के अनुरूप बेहतर ढंग से तैयार करना है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाइजीरिया में इस सप्ताह जिहादी समूहों की कैद से मुक्त कराए गए लोग अब अपनी आपबीती साझा कर रहे हैं। गुरुवार को सुरक्षा बलों ने देश के उत्तर पश्चिमी हिस्से में दो अलग अलग स्थानों से 308 लोगों को मुक्त कराया। इन लोगों का 6 महीने पहले अपहरण किया गया था। वहां की सरकार ने इस अभियान को नाइजीरिया के इतिहास में एक ही दिन में चला गया सबसे बड़ा बचाव अभियान बताया है। इसके साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हो चला। ध्यान के लिए धन्यवाद। साथ रहे बढ़ते हम शोक समाचारों की ओर।
2: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
1: शोक समाचार सुनिए। रॉय रोड कांटोरेल में 70 साल की श्रीमती राजवंती पदारती पैदाशनम रुपना की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी आज शाम 3 बजे उनके घर कौतूहल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बुशों की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। कमीशन टुडे एट 3 PM। रूट जुक्लब वाकुआ में 81 साल के

0: 81 years old के शिव ग्रचन मितु जिन्हें जगदीश के नाम से लोग ज्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई है उनकी अर्थी आज शाम 3:30 बजे उनके घर वाकवा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए फिनिक्स की शमशान भूमि ले जाई जाएगी कमीशन टुडे एट 3:30 PM प्लेन दे जर्सिनी सेंटर दे फ्लैक में 71 साल के 71 years old के श्री कमालुद्दीन बदाई ये शोक समाचार एक बार फिर सुन लेते हैं प्लेन दे जर्सिनी सेंटर दे फ्लैक में 71 साल के 71 ईयर्स ओल्ड के जनाब कमालुद्दीन बदाई जिन्हें रफीक के नाम से लोग ज़्यादा जानते थे इंतकाल कर गए हैं इनका जनाजा आज 2:30 बजे इनके मकान प्लेन दे जर्सिनी सेंटर दे फ्लैक से उठाकर दफनाने के लिए रिश्मो का कब्रिस्तान ले जाया जाएगा फ्यूनरल टुडे एट 2:30 PM शोक में डूबे इन सभी परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है
1: चौरानवे 95.6 98.2 आप सुन रहे हैं RM3

0: तन्हा तन्हा क्यों रहना जब हम हैं साथ साथ मेरे दोस्त तू बस हो जाए तैयार
1: You're listening to RM3 Radio Man.

इस म्यूजिक को सुनकर आपको किसकी याद आती है? बस सबसे पहले हम कहेंगे आप सबों से फिर से हमारा प्यार भरा नमस्कार प्रणाम हेलो गुड आफ्टरनून और हो जाए तैयार इस तीसरे पहर के लिए इस जो दो दूसरा जो घंटा है हमारे जो सुहाना सफर प्रोग्राम में आपका वार्म वेलकम करते हैं यहाँ पर देवीना है आपके संग 3 बजे तक तो 12 बजे से 2 बजे हमने चलाए शशि कपूर साहब पर पिक्चराइज कुछ गाने और अभी भी लोग मैसेज कर रहे हैं कि उनको प्रोग्राम बहुत बहुत अच्छा लगा और गाने की मांग कर रहे हैं मगर मेरे दोस्त आई एम सो सॉरी मगर अभी के लिए हम 90s वाले गाने चला रहे हैं तो कोई बात नहीं अगर आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा जो शशि कपूर पर पिक्चराइज था तो सभी गाने आपके लिए और बाकी जो 90s वाले गाने हैं आपके नाम करने वाले हैं तो बस अभी के लिए हम द स्वीट स्वीट गर्ल रंगीला गर्ल पर पिक्चराइज कुछ गाने चलाएंगे और आप सुन रहे हैं MBC और एम फ्री रेडियो मनोरंजन पर हाँ एक ऐसा सफर जहाँ रास्ते हैं यादों के मंजिल है 90s की सुनहरी दुनिया की और साथ हैं उन गीतों का जिन्हें सुनते ही दिल कहता है अरे वाह वो भी क्या ज़माना था 90s का तो थोड़ा रंगीन थोड़ा रोमांटिक और थोड़ा शरारती और पूरा का पूरा 90s वाला जो दौर था आज एक घंटे में और आज हमारी इस महफिल की खास मेहमान है वो अदाकारा जिनकी आंखों में शरारत चेहरे पर मासूमियत अंदाज में बिजली और डांस में ऐसा जादू कि पूरा पर्दा जैसे उनके साथ थिरकने लगता था जी हाँ दोस्तों आज का सफर है उर्मिला मातोंडकर के नाम वो प्यारी सी सूरत याद आ जाती है ना वो मस्त मस्त रंगीला गर्ल वैसे बचपन में ही उनका जो करियर था शुरू हो चुका था मासूम फिल्म में वो दिखी थी शबाना आजमी के साथ साथ में थे नसरुद्दीन शाह और हंसराज जुगल जो हैं उनके जो को एक्टर थे और वैसे जब बड़े हुए ना तो उनका साथ हुआ फिल्म आ गले लग जा में फिर से दिखे थे मगर उर्मिला की पहली मूवी थी नरसिम्हा एज एन एडल्ट तो अलका जी की आवाज़ में साथ में अमित कुमार साहब जाओ तुम चाहे जहां याद करोगे वहां ये हो जाए उर्मिला पर पिक्चराइज ये गाना

जाशीमान आशिक मूवी का गाना इसमें नजर आए थे ऋषि कपूर साहब, साथ में थी द ब्यूटीफुल उर्मिला और कैसे भूले अनुपम खेर साहब को किशोर कुमार सानू जी की आवाज में। और ये सिर्फ गाना नहीं है, ये 90s की एक पूरी फीलिंग है, सुनते हैं।

प्यार तूने क्या किया। वैसे उर्मिला मातोंडकर वो जानी जाती हैं स्पेशली फॉर हर जो ऑब्सेसिव जो लवर की का जो रोल है उस पर बहुत जचता है। साथ में भूत वाला जो वाली जो आंखें हैं ना वो दिखाती हैं तो बस हम डर ही जाते हैं। उनका एक्टिंग इतना इंटेंस है ना कि जब भी आप उसे किसी रोल में देखेंगे तो बहुत अच्छा लगता है और आपको लगेगा कि बाकी उसमें भूत आ गई है। और इस फिल्म में ऑब्सेशन ऑब्सेसिव गर्ल जो पड़ जाती है प्यार में और क्या क्या कर जाती है प्यार तूने क्या किया। तो ये जो गाना है बहुत ही फेमस हुआ था अपने ज़माने में 90s के ज़माने में और आज भी है। तो बस ये गाना हम जितने लोगों के गाने हम नहीं चला पाए 2 बजे से पहले तो हाय दीदी हेलो जी योर चॉइस इज़ वेरी गुड थैंक यू। शशि कपूर पर वाला गाना उनको बहुत पसंद आया वो है वीना ऑफ एवेंजर्स। मगर अफसोस ये जो प्रोग्राम है 2 बजे ही चला। अभी के लिए ये जो 90s वाले गाने हैं आपके लिए वीना जी और आपके परिवार के लिए और साथ ही ज्योति जी हैं शातो बेनारस से आशनी रेखा सुरेखा और माधव फैमिली के लिए और सभी जो लिसनर्स हैं आरएम फ्री रेडियो मनोरंजन के आप सभी के लिए प्यार भरे गाने 3 बजे तक सुहाना सफर प्रोग्राम देवीना है आपके संग।

कुमार सानू साथ में आशा भोसे जी और इसमें नजर आई थी उर्मिला मातोंडकर, साथ में थे शाहरुख खान और नसीरुद्दीन शाह फिल्म चमत्कार। बीटर वर्सा गाना आप सबों के लिए और धीरे धीरे हमारा जो प्रोग्राम है अपने अंतिम चरण की ओर बढ़ रहा है। टाइम टू साइन ऑफ वेरी क्विक, मिलते हैं बहुत जल्द।

जो 2:54 हुए हैं, देखते ही देखते पता नहीं चला कैसे 3 घंटे फ्यू ऐसे ही जल्दी जल्दी वो बीत गया। मगर आप लोगों के साथ के लिए दिल से शुक्रिया, दिल से धन्यवाद, दिल से थैंक यू मेरे दोस्त। और 3 घंटों में प्यार भरे साथ के लिए

आपने इतने प्यार से हमें मैसेजेस भेजे, हमें आज फ़ोन नंबर देने का मौका ही नहीं मिला क्योंकि पहले से ही फ़ोन बजने शुरू हो चुके थे, मैसेजेस आने शुरू हो चुके थे, क्योंकि आपको तो हमारा फ़ोन नंबर याद है ना। तो बस आपके साथ के लिए धन्यवाद। और ये जो आपका संदेह है, आई होप कि लवली हुआ होगा, और बाकी जो आपका शो शाम है, आपकी जो शाम है वो ब्यूटीफुली खूबसूरती से गुजर जाए, ये हमारी है दिली तमन्ना। ऐसे ही रेडियो मनोरंजन से जुड़े रहिए, और हमारे बाद आएंगे आज प्रताप सिंह लेकर प्रोग्राम ऐसा भी होता है। यही तो है सुहाना सफर, जहां एक गीत शुरू होता है और साथ में शुरू हो जाती है यादों की पूरी फिल्म। और आज हमने याद किया पहले शशि कपूर साहब को, और अभी के लिए 2 बजे के बाद हमने याद की 90s की उस अभिनेत्री को, जिसने अपने चुलबुले अंदाज, शानदार एक्सप्रेशंस, ग्रेसफुल डांस और दमदार अभिनय से बॉलीवुड के उस दौर की ओर और भी रंगीन बना दिया। उर्मिला मातोंडकर, रंगीला की मिली हो, जुदाई की हीरोइन हो या सत्य की विद्या, उर्मिला के हर किरदार में 90s की एक अलग कहानी छुपी है। तो जाते जाते बस इतना कहूँगी, 90s कभी पुराना नहीं होता, क्योंकि 90s के गीतों में हमारी यादें रहती हैं। और जब यादें मुस्कुराने लगे तो समझ लीजिए, समझ लीजिए कि सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुआ है, बस अगली मंजिल का इंतज़ार है। अगली मुलाकात होगी अगले संडे। मैं हूँ देविना, आपसे इजाज़त लेती हूँ। मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए और सुनते रहिए और एम फ्री रेडियो मनोरंजन, क्योंकि जहाँ संगीत है वहाँ यादें हैं, और जहाँ यादें हैं वही है हमारा सुहाना सफ़र। तो बस सजाते जाते जुदाई मूवी का गाना आपको सुनाते हैं। इसमें नज़र आई थी उर्मिला मातोंडकर, श्रीदेवी, अनिल कपूर। तो बस इस गाने का लुफ्त उठाए, मज़ा लीजिए, फिर मिलते हैं। लव यू ऑल।

0: Mid to 3 p.m. सुनते हैं संक्षिप्त समाचार अर्शिता के साथ। आपको नमस्कार अर्शिता।
1: नमस्कार हंसिनी, श्रोताओं को भी नमस्कार। संक्षिप्त समाचार में आप सभी लोगों का स्वागत है। मॉरिशस में पानी के इस्तेमाल पर नई पाबंदियां कल से लागू हो रही हैं। इन प्रतिबंधों के तहत कई गतिविधियों और क्षेत्रों में लोगों को अपनी रोजमर्रा की आदतों में बदलाव करना होगा। इनमें कौ वॉश सेंटर भी शामिल हैं, जिन्हें अब नए नियमों के अनुरूप काम करना होगा। देश में जल भंडार पर लगातार दबाव बना हुआ है। स्थिति को देखते हुए कुछ कौ वॉश संचालकों ने पहले से ही वैकल्पिक उपाय करना शुरू कर दिया है। इनमें बारिश के पानी को इकट्ठा करना एक प्रमुख विकल्प है, ताकि काम जारी रखते हुए पानी की आपूर्ति व्यवस्था पर दबाव को कम किया जा सके। मानव तस्करी एक वैश्विक समस्या है, जिसके गंभीर और विनाशकारी परिणाम होते हैं और जो देशों की सीमाओं से परे फैली हुई है। मॉरिशस में फिलहाल मानव तस्करी के 34 पीड़ितों को गैर सरकारी संगठनों यानी एनजीओ की ओर से सहायता और देखभाल प्रदान की जा रही है। इनमें 2 नाबालिग भी शामिल हैं। वहीं 21 अन्य मामले पुलिस की जांच या कार्रवाई के अधीन है। हालांकि मॉरिशस में मानव तस्करी की समस्या अभी सीमित स्तर पर है, लेकिन इससे निपटने के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं मौजूद हैं। इस दिशा में गैर सरकारी संगठनों, सरकारी अधिकारियों और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। मॉरिशस में 16 से 24 वर्ष की उम्र के करीब 1,00,000 युवा रोजाना नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं। ये आंकड़ा शराब के दुरुपयोग और नशीली दवाओं की लत की रोकथाम और उपचार के क्षेत्र में काम करने वाले गैर सरकारी संगठन डॉक्टर इद्रिस गुमानी उपचार सेंटर से सामने आया है। नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर संगठन ने आज 9 अगस्त को प्लेनवेत इलाके की अल अक्सा मस्जिद के सहयोग से नशीली दवाओं के दुष्प्रभावों पर एक जागरूक सत्र आयोजित किया। इस सत्र का उद्देश्य युवाओं को नशीली दवाओं के सेवन से होने वाले नुकसान के बारे में जागरूक करना और नशे की रोकथाम के महत्व पर जोर देना था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डोनाल्ड ट्रंप से जुड़ी एक अमरीकी कंपनी ग्रीनलैंड में बिना सरकारी अनुमति के तेल की ड्रिलिंग की तैयारी कर रही है। स्थानीय अधिकारियों की मंजूरी के बिना ही ग्रीनलैंड एनर्जी ने जेम्सन लैन क्षेत्र में अपने प्रस्तावित ड्रिलिंग प्रोजेक्ट के लिए जरूरी उपकरण पहुंचा दिए हैं। हालांकि इस परियोजना के लिए आवश्यक आधिकारिक मंजूरियां अभी तक जारी नहीं की गई हैं। और उधर यूरोप से लेकर उत्तरी अमेरिका और एशिया तक जंगलों में आग की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं और ये आग पहले की तुलना में अधिक विकराल होती जा रही है। स्पेन, सर्बिया और इंडोनेशिया के साथ साथ कनाडा में भी दमकल कर्मी ऐसी भीषण आग से जूझ रहे हैं, जिस पर काबू पाना मुश्किल साबित हो रहा है। बढ़ती चरम औसत परिस्थितियां भी आग बुझाने में प्रयासों को और चुनौतीपूर्ण बना रही है। इसके साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हो चला। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद और नमस्कार।
2: Continuous music. RM3.
3: ऐसा भी होता है on RM3.
4: आज कल लोगों को क्या हुआ है? लोग इतने बेईमान और स्वार्थी क्यों बन गए हैं? क्यों आज इंसान हैवान की तरह पेश आ रहा है? कहाँ गई इंसान की दया, करुणा और सहानुभूति की भावनाएं? क्या इंसान इस हद तक गिर चुका है कि वो अपने मतलब

के लिए किसी भी हद तक घेर सकता है? इन्हीं सब सवालों का जवाब हम ढूंढने की कोशिश करेंगे इस कार्यक्रम के दौरान, जिसका टाइटल है ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये है अद्भुत सनसनी खबरों का प्रोग्राम। स्वीकार कीजिए अजय प्रताप सिंह का प्यार भरा नमस्कार। ये है ऑरेंज फ्री रेडियो मनोरंजन 94.5/6/98.2 MHz। अभी से लेकर शाम के 4 बजे तक ले चलते हैं आपको मिस्ट्री की दुनिया में, जहां कुछ भी हो सकता है, ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है।

दोस्तों मौत कहीं भी आ सकती है घर पे घर से बाहर आसमान में धरती पर जब मौत आनी होती है तो एक बहाना होता है और व्यक्ति मर जाता है हाल ही में थाईलैंड में एक 24 वर्षीय फुटबॉल खिलाड़ी जो फुटबॉल खेल रहा था बारिश के मौसम में जोरों की बारिश हो रही थी और 24 वर्षीय खिलाड़ी फुटबॉल खेल रहा था दोस्तों के साथ कि अचानक उस पर बिजली गिर पड़ी और वो रास्ते में ही उसकी जान चली गई केविन नाम था उस लड़के का और थाईलैंड में वो अपने दोस्तों के साथ अक्सर फुटबॉल खेलता था पर उसे क्या पता था कि वो फुटबॉल अंतिम बार के लिए खेल रहा था

खेलते खेलते करकती बिजली उस पर गिर पड़ी और केविन की मौत हो गई। दुनिया में ऐसा भी होता है दोस्तों, सुबह मौत कहीं पर भी आ सकती है। इंसान लाख कोशिश करे मौत से बचने के लिए, पर मौत आ ही जाती है। और अगर हमारा जन्म हुआ है तो इस एक न एक दिन मौत भी आनी है। फिर मौत से क्या डरना, मौत को भी एक दिन गले लगाना पड़ेगा। यही जीवन का कटु

दोस्तों ये तो आप जानते हैं कि दुनिया में दो प्रकार के लोग हैं, एक वेज एक नॉन वेज, यानी कि वेज शाकाहारी, नॉन वेज मांसाहारी। अभी हाल ही में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने एक सर्वे किया है 2000 लोगों पर अमेरिका में, और उस सर्वे के अनुसार ये देखा गया है कि शाकाहारी लोगों की ज़्यादा लंबी आयु होती है। यस, दे हैव ग्रेटर लाइफ एक्सपेक्टेंसी और वे जीवन में स्वस्थ रहते हैं, और शाकाहारी लोग कम टेंशन में रहते हैं। और यह साइंटिफिकली प्रूव है कि जो लोग सब्जी का सेवन करते हैं उनका स्वास्थ्य ज़्यादा ठीक रहता है, उन्हें डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, कैंसर ये सब नहीं होते। हाँ, हो सकता है दूसरी बीमारियां हो, पर इन सब बीमारियों से वह बच सकते हैं। सो यह सर्वे जो है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इंग्लैंड में किया गया, जिसके अनुसार वेजिटेरियन लोग ज़्यादा साल तक जीते हैं। आपका क्या ख्याल है दोस्तों? पर एक ना एक दिन तो मरना है, चाहे वेज हो या वेज ना हो, एक दिन सभी को मौत जो है आनी है, क्योंकि यही विधि का विधान है कि जो भी आता है संसार में उसे एक दिन संसार को छोड़कर जाना पड़ता है।

ये तो सभी लोग जानते हैं कि कुत्ता एक पालतू जानवर है, इट्स अ डोमेस्टिकेटेड एनिमल। पर अगर आप कुत्ते को छेड़छाड़ करेंगे उसके साथ या उसकी पूंछ को अपने पैर से दबाएंगे तो वो आपको काटेगा जरूर। हाल ही में क्या हुआ, रवीना टंडन बॉलीवुड की सुपरस्टार, उसके साथ एक घटना घटी कार्यक्रम में, कुत्ते से जुड़ी घटना है।

लेकिन वास्तव में कुत्ता ने उसे काटा नहीं। फिल्म ओ माय गॉड के स्क्रीनिंग के दौरान कुत्ता रवीना टैंडन पर झपटा जरूर, पर सौभाग्यवश कुत्ते ने उसे काटा नहीं और रवीना को कोई चोट नहीं पहुंची। पर मीडिया वाले जो है न्यूज़ को बढ़ा चढ़ाकर बोल रहे हैं कि कुत्ता ने रवीना टैंडन को काटा है, उसे गहरी चोट लगी है। पर एक इंटरव्यू में रवीना टैंडन ने कहा कि कुत्ता उसकी ओर झपटा था उसे काटने के लिए, पर उसने काटा नहीं और बाद में सब कुछ नॉर्मल हो गया। सो बॉलीवुड की दुनिया में सब होता है, इसको पापाराजी भी कह सकते हैं। मिर्च मसालेदार कर ये लोग पता नहीं क्या क्या इन्फॉर्मेशन स्प्रेड कर रहे हैं सोशल मीडिया पर। यूट्यूब पर जाएंगे तो आप देख सकते हैं किस प्रकार वह कुत्ता झपटा था रवीना टैंडन पर, कुत्ते ने काटा नहीं, पर लोग पता नहीं क्या क्या बातें बना रहे। भाई लोगों का काम है कहना, लोग तो भगवान को भी हंसते हैं, फिर वो तो एक इंसान है। लोगों की आदत है सब पर इधर उधर की बात करना, है कि नहीं।

इमेंस बेस्ट फ्रेंड इज हिज डॉग। जी हाँ, इस दुनिया में इंसान का सबसे अच्छा दोस्त उसका कुत्ता होता है, और कुत्ता वफादार होता है जिंदगी भर। चाहे वह अपने मालिक का झूठा खाना खाता है, पर वो कभी उसके साथ धोखा नहीं करता। मध्य प्रदेश में घटना घटी है। बीते गांव में एक अजीबोगरीब घटना घटी है। प्रदीप नाम का एक व्यक्ति रहता था, उसके पास उसका कुत्ता उसके साथ रहता था। कुत्ता का नाम था दुग्गू, और कुत्ते और मालिक के बीच में बहुत प्यार था। जहाँ जाता था प्रदीप, दुग्गू उसके पीछे पीछे पीछे पीछे चला जाता था। एक दिन अचानक प्रदीप की मृत्यु हो गई दिल के दौरा पड़ने से। उसी दिन उसके कुत्ते की भी मौत हो गई, और दोनों का अंतिम

संस्कार एक ही दिन किया गया। सो शायद भगवान को यही मंजूर था, क्योंकि कुत्ता इतना वफादार था वो अपने मालिक के बिना जी नहीं सकता था। और जैसे उसकी मालिक की मृत्यु हुई, 5 मिनट बाद दुग्गू की भी मृत्यु हो गई। इसे दोस्तों हमेशा याद रखिएगा, जो कुत्ता पालते हैं वो केवल एक कुत्ता नहीं, वो आपका दोस्त भी है, वो आपके परिवार का एक सदस्य भी है।

दोस्तों, इस दुनिया में बहुत से ऐसे इंसेक्ट है जिससे लोग डरते हैं। एक है तेल चट्टा कॉकरोच, दूसरा है छिपकली जिसे हम लिजर्ड कहते हैं। और लिजर्ड दो प्रकार के हैं, एक जो ब्राउन वाला होता है, एक ग्रीन वाला होता है। सब हम आपको बताएंगे इस दुनिया का सबसे बड़े लिजर्ड का नाम, सबसे बड़ी छिपकली का नाम। सो इस दुनिया का सबसे बड़ी छिपकली का नाम है कोमोडो ड्रैगन। कोमोडो ड्रैगन दुनिया की सबसे बड़ी छिपकली है और उसका वैज्ञानिक नाम है वारानस कोमोडेंसिस। और इंडोनेशिया के कुछ द्वीप विशेषकर कोमोडो रिंका फ्लोरेस और गिली मिटांग में यह पाया जाता है। यह छिपकली आमतौर पर लगभग 2 से 3 मीटर तक का है। इसका वजन है, बड़े नर का वजन लगभग 60 से 90 किलोग्राम हो सकता है। कुछ असाधारण नमूने इससे भी भारी हो सकते हैं। और यह इसका आहार है हिरन, जंगली सुअर, छोटे जीव और कभी कभी अपनी ही प्रजाति के छोटे कोमोडो ड्रैगन भी। शिकार करने का तरीका, इसके शक्तिशाली जबड़े, नुकीले दांत और विषैले काटने की क्षमता इसे बेहद प्रभावी शिकारी बनाती है। थोड़ी दूर तक लगभग 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकती है और जंगल में लगभग 20 से 30 वर्ष तक यह जीवित रह सकती है। और यह अच्छी तैराक भी है और द्वीपों के बीच पानी पार कर सकती है। सबसे बड़ी खास बात यह है कि कोमोडो ड्रैगन सिर्फ बड़ी नहीं है, यह एक प्राचीन शिकारी है जैसे दिखने वाली मंस्टर लिजर्ड। इसके मुंह में एक ऐसे विषैले पदार्थ होते हैं जो कांटे

गए शिकार में खून बहने और रक्तचाप गिरने जैसी समस्याएं पैदा कर सकती है। दिलचस्प तथ्य यह है कि कोमोडो ड्रैगन आज जीवित छिपकलियों में सबसे बड़ा है, लेकिन प्रागैतिहासिक काल में इससे भी बड़ी मॉन्स्टर छिपकलियां मौजूद थी। सो याद रखिएगा, एक दिन अगर आप किसी ने आपके साथ क्विज किया है और आपसे पूछेंगे टेल मी द बिगेस्ट लिजर्ड इन द वर्ल्ड व्हाट्स इट्स नेम, तो कहिएगा द बिगेस्ट लिजर्ड नेम इज कोमोडो ड्रैगन। भाई हमारे आगे छिपकली आएगा मैं तो घर छोड़ के भाग जाऊंगा। छिपकली और कॉकरोच, इन दोनों चीज़ों से मुझे तो बेहद डर लगता है। अब आप पता नहीं डरते हैं या नहीं, पर मुझे छिपकली और कॉकरोच से बेहद डर लगता है।

दोस्तों तितलियां बहुत खूबसूरत होती है, रंग बिरंगे तितलियां फूलों पर बैठती है और इतनी खूबसूरत होती है। एंड यू नो अगर एक दिन अगर दूसरा जन्म हमें मिला तो हम भगवान से कहेंगे आई वुड नॉट लाइक टू बी ह्यूमन बीइंग, आई वुड लाइक टू बी ए बटरफ्लाई, मैं तितली बनना चाहूँगा। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि तितली उड़ता रहता है, कभी इस फूल पे तो कभी उस फूल पे, कभी उस फूल पे तो कभी इस फूल पे, और आई वुड लाइक टू बी ए बटरफ्लाई। सो जब बटरफ्लाई के बारे में बात करें, सो लेट मी टेल यू, इस दुनिया का सबसे बड़े बटरफ्लाई का नाम है क्वीन अलेक्जेंड्रा बर्डविंग। ये दुनिया की सबसे बड़ी तितली है और इसका वैज्ञानिक नाम है ओर्निथोप्टेरा अलेक्जेंड्रा और ये पापुआ गिनी में पाया जाता है। मादा का पंख फैलाव लगभग 25 से 28 सेंटीमीटर का है और नर जो है मादा से छोटा होता है और उसके पंखों पर बहुत चमकीले हरे नीले रंग दिखाई देते हैं। मादा जो है अपेक्षाकृत बड़ी और भूरे काले रंग की होती है जिस पर क्रीम पीले रंग के निशान होते हैं और ये तितलियां व्यवसक तितलियां मुक्त फूलों का रस पीती है। बटरफ्लाइज दे ड्रिंक द नेक्टर फाउंड इन द फ्लावर और अंडे से लावा इल्ली फिर प्यूपा और अंत में व्यवसक तितली बनती है। तो पहले तो वो अंडे से निकलती है, फिर वो प्यूपा बनती है जैसे मुतुक की तरह होता है, ऐसा होता है, फिर वही उसमें पंख लगते हैं तब वो तितली बनती है। और यह तितली केवल पापुआ गिनी में पाया जाता है। इसके प्राकृतिक आवास के नष्ट होने और अन्य मानवीय गतिविधियों के कारण इसकी संख्या पर दबाव पड़ रहा है, इसलिए यह संरक्षण की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण और अत्यंत दुर्लभ तितली है। और एक खास बात, इस प्रजाति की मादा का पंख फैलाव लगभग एक छोटी नोटबुक के चौड़े हिस्से जितना हो सकता है, यानी कि हाथ पर बैठने पर सामान्य तितलियों की तुलना में बहुत विशाल दिखाई देगी। सो याद रखिएगा कि इस दुनिया की सबसे बड़ी तितली का नाम है क्वीन अलेक्जेंड्रा बर्डविंग और यह पाया जाता है पापुआ गिनी में, मॉरिशस से बहुत दूर। सो एक दिन अगर आप पापुआ गिनी में जाएंगे तो वहाँ पर जाकर ढूंढिएगा इस तितली को जो कि इस दुनिया का सबसे बड़ी तितली मानी जाती है।

इस दुनिया में हर प्रकार के लोग हैं, मोटे लोग, पतले लोग, नाटे जो लोग नाटे होते हैं, कुछ लोग लंबे कद के होते हैं. सो अब हम बात करेंगे इस दुनिया के सबसे मोटी औरत के बारे में. यस, द मोस्ट ओबीज वुमेन इन द वर्ल्ड, दुनिया की सबसे अधिक वजन वाली महिला, जी हाँ, उसका नाम था कारोल अन यागर और वो सबसे अधिक वजन वाली महिला थी. उसका जन्म हुआ था 1960 में और मृत्यु हुई 1994 में. अरे अरे, बेचारी इस दुनिया में नहीं रही. बताया जाता है कि अधिकतम वजन था उसका 544 किलोग्राम, यानी कि 1,200

पाउंड के आसपास। उनका वजन, गंभीर मोटापे और उससे जुड़ी स्वास्थ्य समस्याओं के कारण बहुत बढ़ गया था। जीवन के अंतिम समय में उन्हें चलने फिरने और दैनिक गतिविधियों के लिए काफ़ी सहायता की आवश्यकता थी। वो इतनी मोटी थी कि वो चल नहीं पाती थी। ज़रा सोचिए, अगर एक व्यक्ति इतनी मोटी है तो वो चलेगी कैसे, दौड़ेगी कैसे। उनका निधन 34 years की आयु में, she was only 34, 34 साल की आयु में इसकी मृत्यु हुई। और इतिहास में अत्यधिक वजन से कुछ दावे पूरी तरह दिलचस्प की रूप में प्रमाणित नहीं है, लेकिन ये माना जाता है कि यह महिला जिसका नाम है कैरोल एन यागर, शी वॉज द मोस्ट बिगेस्ट एंड मोस्ट ओबीज वुमेन इन द वर्ल्ड, बेचारी इस दुनिया में नहीं रही। उनकी मृत्यु हुई 1994 में। तो आप YouTube पर जा सकते हैं और टाइप कीजिए YouTube पर कैरोल CAROL लिव स्पेस टाइप ANN लिव स्पेस टाइप कीजिए यागर YAGER, तो आप देख पाएंगे उसकी वीडियो ली गई है। वो कितनी मोटी थी, कैसे वो चलती थी, कैसे बैठती थी, कैसे खाती थी, और बेचारी की मृत्यु हुई 1994 में। सो अगर आप अपना वजन कंट्रोल करना चाहते हैं तो आपको जो रेड मीट है वो तो नहीं खाना चाहिए। डॉक्टर कहते हैं कि अगर आप अपना वजन, अपना वेट कम करना चाहते हैं तो रोज़ एक्सरसाइज करना चाहिए और गर्म पानी पीना चाहिए और मेडिटेशन करना चाहिए, योगा करना चाहिए, एंड यू शुड कीप योरसेल्फ फिट। अगर आप फिट नहीं हैं तो कैसे आप औरों की देखभाल करेंगे। अगर एक माँ है या पिता है, अगर आप ही ऐसे मोटे हैं, इतनी परेशानियां हैं आपको, तो आप अपने बच्चों की देखभाल कैसे करेंगे। इसीलिए कहते हैं यू हैव टू बी फिट इन द सोसाइटी, ठीक है। सो अगर आप में से बहुत से लोग ओबीज है तो आज ही जाइए एक जिम में, वहां पर एक्सरसाइज कीजिए, कसरत कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, योगा कीजिए, और अपने खाना, खाने पीने पर कंट्रोल कीजिए। अगर खाना पीना कंट्रोल करेंगे तो सब कंट्रोल में होगा। दुनिया में ऐसा भी होता है दोस्तों, ऐसा भी होता है।

तम्मा। लेडीज एंड जेंटलमैन, गाइज एंड गर्ल्स, अद्भुत सनसनी खबरों का प्रोग्राम यहीं पर समाप्त होता है। ऐसा भी होता है, शाम के 3 बजे से अभी आप तक हमने हमारा साथ दिया, थैंक यू सो सो मच। 4 बजे का फ्लैश न्यूज के बाद डॉक्टर पूनम से आप सुनेंगे फिल्मी नगमे, फिल्मी गजलें प्रोग्राम। हमारी आपकी मुलाकात होगी कल मंडे की रात को, मंडे 10 अगस्त को हम मिलेंगे कल रात को, जहां 9 से 11 बजे रेडियो मॉरिशस रेडियो मनोरंजन पर प्रोग्राम होगा नाचने गाने का, भोजपुरी तड़का। सो नाचेंगे गाएंगे झूमेंगे कल रात के 9 बजे से 11 बजे तक ऑन रेडियो मनोरंजन रेडियो मॉरिशस भोजपुरी तड़का प्रोग्राम में। सो टिल देन इज गुड बाय फ्रॉम मी अजय प्रताप सिंह, की आप सभी को प्यार भरा नमस्कार और आदाब, लव यू ऑल, नमस्ते, बाय बाय, गॉड ब्लेस।

0: Center 95.5, North South 95.6, East West 98.2.
1: You are listening your RM3 Manoranjan Radio. Manoranjan Radio.
2: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
3: शाम के 4 बज रहे हैं।
4: नमस्कार आदाब, सुनते समाचार आशिता जी के साथ। नमस्कार, हर हर महादेव।
5: नमस्कार संजय, आपको भी हर हर महादेव। संक्षिप्त समाचार में आप सभी लोगों का स्वागत किया जाता है। सबसे पहले स्थानीय खबरें। मानव तस्करी एक वैश्विक समस्या है जिसके गंभीर और विनाशकारी परिणाम होते हैं और जो देशों की सीमाओं से परे फैली हुई है। मॉरिशस में फिलहाल मानव तस्करी के 34 पीड़ितों को गैर सरकारी संगठनों यानी NGO की ओर से सहायता और देखभाल प्रदान की जा रही है। इनमें 2 नाबालिग भी शामिल हैं, वहीं 21 अन्य मामले पुलिस की जांच या कार्रवाई के अधीन हैं। हालांकि मॉरिशस में मानव तस्करी की समस्या अभी सीमित स्तर पर है, लेकिन इससे निपटने के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं मौजूद हैं। इस दिशा में गैर सरकारी संगठनों, सरकारी अधिकारियों और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। मॉरिशस में पानी के इस्तेमाल पर नई पाबंदियां कल से लागू हो रही हैं। इन प्रतिबंधों के तहत कई गतिविधियों और क्षेत्रों में लोगों को अपनी रोजमर्रा की आदतों में बदलाव करना होगा। इनमें का वॉश सेंटर भी शामिल हैं, जिन्हें अब नए नियमों के अनुरूप काम करना होगा। देश में जल भंडार पर लगातार दबाव बना हुआ है। इस स्थिति को देखते हुए कुछ कौवाश संचालकों ने पहले से ही वैकल्पिक उपाय करना शुरू कर दिया है। इनमें बारिश के पानी को इकट्ठा करना एक प्रमुख विकल्प है, ताकि काम जारी रखते हुए पानी की आपूर्ति व्यवस्था पर दबाव को कम किया जा सके। मॉरिशस में 16 से 24 वर्ष की उम्र के करीब 1,00,000 युवा रोजाना नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं। ये आंकड़ा शराब के दुरुपयोग और नशीली दवाओं की लत की रोकथाम और उपचार के क्षेत्र में काम करने वाले गैर सरकारी संगठन डॉक्टर इद्रिस गुमानी उपचार केंद्र से सामने आया है। नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर संगठन ने आज 9 अगस्त को प्लनवेयत इलाके की अल अक्सा मस्जिद के सहयोग से नशीली दवाओं के दुष्प्रभावों पर एक जागरूकता सत्र आयोजित किया। इस सत्र का उद्देश्य युवाओं को नशीली दवाओं के सेवन से होने वाले नुकसान के बारे में जागरूक करना और नशे की रोकथाम के महत्व पर जोर देना था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डोनाल्ड ट्रंप से जुड़ी एक अमरीकी कंपनी ग्रीनलैंड में बिना सरकारी अनुमति के तेल की ड्रिलिंग की तैयारी कर रही है। स्थानीय अधिकारियों की मंजूरी के बिना ही ग्रीनलैंड एनर्जी ने जेमसन लैन क्षेत्र में अपने प्रस्तावित ड्रिलिंग प्रोजेक्ट के लिए जरूरी उपकरण पहुंचा दिए हैं। हालांकि इस परियोजना के लिए आवश्यक आधिकारिक मंजूरियां अभी तक जारी नहीं की

0: गई हैं। तो इसके साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हो चला। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद और नमस्कार।
1: Your news on NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.

0: नमस्ते आदाब, वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। 4:10 हुए हैं और संडे का ये प्यारा सा दिन 9 अगस्त का, जहाँ पे हम साथ साथ फिर से मिल गए कहते हैं। और जब ये रविवार का दिन आता है और ये जब शाम आती है तो कुछ अलग सी होती है। हफ्ते भर की भागदौड़ जब आप बैठते हैं थोड़ा सुकून मिलता है, और ऐसे में अगर कोई गज़ल कानों में पड़ जाए दिल कह उठता है हाँ बस यही चाहिए था। इतनी सारी भागदौड़ के बाद थोड़ा सा सुकून आप सबके लिए। दोस्तों आज की शाम थोड़ी खुशी की है, थोड़ी उदासी की, थोड़ी मोहब्बत की और थोड़ा दर्द भी, कुछ पुरानी यादें और एक हल्की सी उम्मीद, क्योंकि ज़िंदगी यही तो है दोस्तों, सब कुछ एक साथ। तो आइए इस शाम को साथ जीते हैं फिल्मी गज़लों में। मैं हूँ आपके साथ पूनम, और आपको मैं इतना ही कहूँगी, जो भी गज़ल यहाँ चलेगी, जो भी जो गाने चलेंगे, चाहे धुन चलेगी, जो आपको तरंगे सुनाई देंगी, बस हम इतना ही गाएंगे। इसमें झूमिए, इसमें घूमिए, इसमें एहसास कीजिए कि ये सब आपके लिए है। इंजॉय कीजिए अपने इस प्रोग्राम को।
1: RM3 Radio.

0: 4:15 हो चुके हैं दोस्तों। एक शायर हैं जिनका नाम है शकीब जलाली। उर्दू शायरी का एक ऐसा नाम जो बहुत कम लोग जानते हैं, पर जो जानते हैं वो भूल नहीं पाते। उनकी शायरी में एक अजीब सी तड़प है। लिखते हैं, मुझे तोड़ा भी तुमने, जोड़ा भी तुमने, मेरी जिंदगी का हासिल तुम ही तुम हो। हर मोड़ पर तुम्हारी याद साथ रही, यह इश्क है या जंजीर समझ नहीं आता। दोस्तों, कभी ऐसा लगा है कि कोई एक इंसान आपकी पूरी जिंदगी बन जाए? तोड़े भी वही, जोड़े भी वही, यही तो है सबसे ज़्यादा प्यार और सबसे ज़्यादा मोहब्बत। कहते हैं कि अगर ऐसी सच्ची मोहब्बत मिल जाए तो उससे ज़्यादा क्या चाहिए।
1: RM3 Radio.

0: दोस्तों, एक बहुत बड़े शायर हुए, उनका नाम है जफर इकबाल। एक ऐसे शायर जिन्होंने गजल को एक नया मोड़ दिया। सादे लफ्ज, गहरी बात, बहुत प्यार से लिखा उन्होंने। ये जो दर्द है सीने में इसे क्या नाम दूं, ये जो दर्द है सीने में इसे क्या नाम दूं, तुम्हारी याद है या जख्म फर्क नहीं पड़ता। रोज सोचता हूँ भूल जाऊं, रोज याद आते हो, तुम्हें भूलने की आदत अभी तक डाली नहीं जाती। दोस्तों, किसी को भूलने की कोशिश करो और वो और याद आए, ये दिल भी कमाल का है ना। जिसे जाने देना चाहे उसे जाने नहीं दे सकते, जिसे थामना चाहे उसे थाम नहीं सकते, और बस तड़पते रहते हैं। यही तो मोहब्बत की एक ऐसी लॉ है जो सिर्फ चलती रहती है और इंसान को जलाती रहती है, और बस इतना कहती है, प्यार कर, मोहब्बत कर, और उससे कर जिससे तुझे है, उससे नहीं जिससे नहीं है। और सच बात है कि जिससे मोहब्बत होती है उसके लिए तड़प भी उतनी ज़्यादा होती है।
1: RM3 Radio.

0: नजर।
1: 4:35 हो चुके हैं दोस्तों और आप जुड़े हैं अपने ही प्रोग्राम के साथ यानी कि फिल्मी गजलों के साथ। और हम बात करते हैं यहाँ पर शायर और ऐसी शायराओं की जिनकी मोहब्बत, जिनकी जुदाई, जिनकी बातें आज भी पढ़ी जाती हैं, लिखी जाती हैं। ऐसी एक शायरा हुई हैं, उनका नाम है नसरीन अंजुम भट्टी। एक ऐसी आवाज़ जिसने औरतों के दिल का सच बताया। लिखती हैं, मैंने चाहा था उसे पर कहा नहीं,

0: मैंने चाहा था उसे, पर कहा नहीं, वो समझा नहीं, मैंने समझाया नहीं। ये खामोशी, ये फासला, ये जुदाई, ये सब मेरे ही हाथों की बनाई हुई है। दोस्तों, कभी कभी हम खुद ही अपनी मोहब्बत के दुश्मन बन जाते हैं, खामोश रह जाते हैं। जब बोलना चाहिए था, बोला नहीं। आज जो बात आपने किसी को कही नहीं, आप कह सकते हैं। और आज भी अगर आपका दिल कहता है कि आपको नहीं कहना चाहिए, तो मत कहिए। बस दिल पर हाथ रखकर खुद से कहिए कि अगर आपको उसकी याद आ रही है, या उसकी मोहब्बत में आज भी आप डूबे हुए हैं और उसकी बातों को आज भी याद करते हैं, तो सच बात है, आपको उनसे मोहब्बत सच है, दिल से है। और उस दिल से मोहब्बत अगर हो, तो फिर और क्या चाहिए। यही तो इंसान चाहता है कि कोई किसी को प्यार करे, भले उसे याद हो ना हो, पता हो या ना हो।
1: RM3 Radio.

0: आप सुन रहे थे छाया गांगुली की आवाज में बहुत ही प्यारी सी गजल, आपकी याद आते रही रात भर। चलिए बात करते हैं एक और ऐसी शायरा की जो उर्दू की एक बेहद संवेदनशील शायरा हैं। उनका नाम है यास्मीन हमीद। लिखती हैं, तुम्हारे जाने के बाद घर खाली नहीं हुआ, तुम्हारे जाने के बाद घर खाली नहीं हुआ, बस तुम्हारी आवाज़ गूंजती नहीं अब। हर चीज़ वैसी है, सब कुछ है जो नहीं है, वो कुछ ही तो तुम थे अब समझ आया, जब तुम चले गए तब समझ आया कि मेरे पास कुछ नहीं बचा। दोस्तों, जब कोई चला जाता है तब एहसास होता है कि वो कितना ज़रूरी था। आज उन्हें याद कीजिए जो नहीं है, पर जो हैं उनकी कद्र कीजिए, उनको प्यार दीजिए, उनको मोहब्बत से साथ रखिए, उन्हें संभाल के अपने हाथों में हाथ डाल के चलिए, जो है उनको पकड़ के चलिए, क्योंकि यही तो हैं जिनका साथ आपको चाहिए था और आज आपके पास हैं।
1: RM3 Radio.

0: बजकर 47 मिनट हो चुके हैं दोस्तों और आप जुड़े हैं अपने ही प्रोग्राम फिल्मी गजलों के साथ और मैं हूं आपके साथ पूनम। एक बहुत प्यारे से शायर हुए, बहुत नाम लिया उन्होंने, ज़िंदगी बहुत प्यारी जी और उन्होंने जब भी लिखा तो सब कुछ ऐसा लिखा कि कोई उसे पढ़े तो मतलब सारी ज़िंदगी पढ़ता रहे। लिखते हैं, घर से निकलते वक्त माँ की दुआ साथ थी, घर से निकलते वक्त माँ की दुआ साथ थी, उसी दुआ ने हर मुश्किल आसान की। जो बिछड़ गए हैं हमसे उनकी याद है, पर माँ की आंखों में पूरी दुनिया बसी है मेरे। दोस्तों, माँ की दुआ दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। आज अगर माँ पास है तो एक बार उसके कदम चूमिए और अगर दूर है तो दिल से दुआ दीजिए, जहाँ रहें खुश रहें। इस संसार में है तो बहुत अच्छी बात की, मिलने जाइए, घूमने जाइए उनके साथ, उनकी इच्छाएं पूरी कीजिए जैसे वो आपकी बचपन में करते थे। और अगर पास नहीं है तो कोई नहीं, उनकी यादों में उनके प्यार को फिर से जिए, उसके एहसास को जिए। जब आप जिएंगे तो आप देखेंगे कि वो माँ बिल्कुल पास है। इंजॉय कीजिए इस गजल को।
1: RM3 Radio.

4:53 हो चुके हैं, आज की महफिल यहीं रुकती है। आज बहुत कुछ कहा, बहुत कुछ सुना, इश्क भी था, दर्द भी था, याद भी थी और बहुत प्यारी सी उम्मीद भी। पर एक बात दिल में रखिए, जिंदगी में जो भी हो महसूस करते रहिए, क्योंकि जो महसूस कर सकता है वही तो जीता है। अगले रविवार शाम 4 बजे फिर मिलेंगे। मुझसे पहले थे आपके साथ प्रताप जी, जो कि बहुत ही प्यारा प्रोग्राम देते हैं, जो मुझे बहुत पसंद है, और मेरे बाद आएंगी शीतल जी, उनके साथ भी आप ऐसे ही साथ देते रहिएगा। तब तक मुस्कुराते रहिए। ये थी आपकी फिल्मी गज़लें, मैं थी आपके साथ पूनम, RM3 पर हमेशा आपके साथ और आपके हर सुख दुख में। बस हम इतना ही कहेंगे, मुस्कुराहट के साथ आगे बढ़ते चलिए और साथ दीजिएगा, इंजॉय कीजिएगा अपनी लाइफ को, संडे को इंजॉय कीजिएगा। आपको बहुत बहुत प्यार। RM3 Radio.

0: Center 95.5. North South 95.6. East West 98.2.
1: You are listening your RM3 Manoranjan Radio.
2: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
3: साया जो हर पल हमारे साथ रहता है, एक ऐसा समय भी आता है कि वो साया साथ छोड़ जाती है, पर जो हमेशा दामन पकड़े रहती है वो है यादें।
4: सदाबहार गाने, एवरग्रीन मेलोडीज, टाइमलेस बॉलीवुड क्लासिक, पुराने गाने होने के बावजूद जवां दिलों से आज भी जुड़ जाते हैं, आज भी जवां दिलों के धड़कन को छू जाते हैं। इतना न मुझसे तू प्यार बढ़ा कि मैं एक बादल आवारा, लता जी और तलत महबूब की जुबानी आज भी दिलों के एहसास को बयां कर रहे हैं। राजेंद्र कृष्ण के अल्फाज, खूबसूरत संगीत दिया सलील चौधरी ने। ये गाना फिल्माया गया सुनील दत्त और आशा पारेख पर फिल्म छाया, जो कि आई थी 1961 में।

एक सफर और कुछ पुराने एहसास, आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है। सोलफुल मेलोडीज ऑफ द गोल्डन एरा, अ परफेक्ट ब्रेथ टेकिंग टाइमलेस क्लासिक फीचरिंग वहीदा रहमान और द ग्रेट विजनरी फिल्म मेकर देवानंद साहब। रोमांटिक ड्रामा मूवी गाइड 1965 की रही ये फिल्म।

One of the most unforgettable, na bhulne wala romantic gana, the magical charm of Aao Huzur Tumko Sitaron Pe Le Chalo, ek amar awaz, आशा जी की आवाज उन्होंने गाया बबीता के लिए। फिल्म रही किस्मत, ओपी नैयर ने संगीत से सजाया इस गाने को और गाने को लिखा एस एच बिहारी ने।

संगीत की दुनिया के एवरग्रीन ड्यूट अनगिनत कलाकारों के लिए अपने आवाज दे, लता जी और किशोर कुमार, एक न भूलने वाला गाना। पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए। फिल्म आई थी 1973 में, हीरा पन्ना फीचरिंग देव आनंद साहब और जिना तमान। राहुल देव बर्मन ने इस गाने को संगीत दिया और गाने को लिखा बड़ी खूबसूरती से आनंद बख्शी ने।

कसम से ये गाना ज़रूर आपको हमारे इस प्रोग्राम तक खींच लाएगा। बेकरार करके हमें यूं न चाहिए, आपको हमारी कसम, लौट आइए। 20 साल बाद बिस्वजीत और वहीदा रहमान की जोड़ी ने इस खूबसूरत गाने को बड़े पर्दे पर पेश किए, द शॉम ऑफ द गोल्डन एरा। 20 साल बाद हेमंत कुमार की आवाज़ गूंजी इस गाने के लिए।

कहते हैं कि ओल्ड इज गोल्ड, पुराने गीतों ने ये साबित तो कर ही दिया। द जर्नी इनटू द नॉस्टैल्जिया ऑफ द गोल्डन एरा, नसीब मेरे नसीब में तू है के नहीं, फीचरिंग अमिताभ बच्चन और हेमा मालिनी। 1981 की फिल्म रही, जहां संगीतकार रहे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। गाने को लिखा आनंद बख्शी ने, हेमा मालिनी के लिए इस गाने में प्लेबैक दिया। भारतीय हिंदी सिनेमा के इतिहास के सबसे महान कलाकार रही द ग्रेट लता जी ने।

प्यार की गलियों से गुजरते हुए आज भी करोड़ों दिलों पर ये गाना राज कर रहा है, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू। किशोर कुमार की आवाज के जादू सपनों की बातों को, दिल के अल्फाज को, दिल के हर एक एहसास को जुबां पर ले आते हैं। फिल्म रही आराधना, धमाकेदार परफॉर्मेंस ऑफ द फर्स्ट सुपरस्टार ऑफ इंडियन सिनेमा राजेश खन्ना साहब। उनके ओपोजिट शर्मिला टैगोर मौजूद रही। संगीत दिया इस खूबसूरत गाने में एस जी बर्मन ने।

0: चलिया।
1: छुपके छुपाते हुए इकरार मोहब्बत जुबां तक ले आए, गुम है किसी के प्यार में दिल सुबह शाम। किशोर कुमार और लता जी की आवाज गूंजी रणधीर कपूर और रेखा के लिए। 1972 की फिल्म रही रामपुर का लक्ष्मण।

किशोर कुमार में खास बात ये थी कि हर एक गाने को, हर एक कैरेक्टर को अपने आवाज में ढालने की क्षमता रखते थे। एक बेहद ही हसीन गाने को अपनी आवाज से सजाया, ऐसे न मुझे तुम देखो। दिल के खूबसूरत एहसास को कितने खासियत से उन्होंने पेश किया देवानंद साहब के लिए। फिल्म डार्लिंग डार्लिंग द ग्रेट म्यूजिक कम्पोजिशन आर डी बर्मन की रही।

हिंदी सिनेमा में अनगिनत कलाकार रहे जिनके आवाज आज भी अनगिनत खूबसूरत गाने दे रहे हैं। उनके बीच रहे अमित कुमार, ये जमीन गा रहा है, आसमां गा रहा है। 1982 की फिल्म रही तेरे कसम फीचरिंग कुमार गौरव और पूनम धिलन, आर डी बर्मन ने संगीत इस गाने में दिया।

भारतीय सिनेमा के अनगिनत महान संगीतकारों के बीच राजेश रोशन, उन्होंने संगीत दिया फिल्म काला पत्थर में, गाना रहा एक रास्ता है जिंदगी। साहिर लुधियानवी ने इस गाने को लिखा, इस गाने को बड़ी खासियत से बड़े पर्दे पर पेश किया शशि कपूर ने, गाने को प्लेबैक दिया किशोर कुमार और लता जी ने।

The ultimate destination for timeless Bollywood classic. आपके यादें प्रोग्राम में ऐसा समा ना होता, कुछ भी यहाँ ना होता, मेरे हमराही जो तुम ना होते। लता जी की आवाज गूंजी अनीता राज के लिए फिल्म जमीन आसमां। अनीता राज के ओपोजिट संजय दत्त मौजूद रहे और हमेशा की तरह आरडी बर्मन ने अपने संगीत को कुछ इस तरह से फिरोया कि ये गाना आज भी दिलों के धड़कन

रविवार 9 अगस्त 2026 के इस सायंकालीन समाचार बुलेटिन में आप सभी लोगों का स्वागत किया जाता है। सबसे पहले आज की सुर्खियां। मॉरिशस में पानी के घटते भंडार के बीच सोमवार से ड्राई सीजन रेगुलेशन 2026 लागू होंगे। पीने के पानी से गाड़ियां धोने, पौधों की सिंचाई और स्विमिंग पूल भरने पर पाबंदी रहेगी। वहीं कौ वाश कारोबार को भी नए नियमों के मुताबिक खुद को ढालना होगा। मानव तस्करी को लेकर मॉरिशस में फिलहाल 34 पीड़ितों की देखभाल और सरकारी संगठन कर रहे हैं, गैर सरकारी संगठन कर रहे हैं। इनमें 2 नाबालिग शामिल हैं। वहीं 21 मामलों की पुलिस जांच या कार्रवाई

0: कार्रवाई जारी है। दुनिया में भूख की समस्या में मामूली सुधार के बावजूद करोड़ों लोगों को आज भी भरपेट भोजन नहीं मिल रहा। मॉरिशस में भी कई परिवार पौष्टिक भोजन जुटाने में मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। थिएरी सोलेय ने कुपोषण से निपटने के लिए और प्रयासों की जरूरत पर जोर दिया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में बेकाबू जंगल की आग के बीच आपातकाल की घोषणा। हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने का आदेश दिया गया। आग 9,500 हेक्टेयर से ज्यादा इलाके में फैल चुकी है। उधर स्पेन के कुछ हिस्से भी जंगल की आग से जूझ रहे हैं। इन सुर्खियों को अब हम विस्तार देते हैं। पानी की हर बूंद अब मायने रखती है। सोमवार से सेंट्रल वाटर अथॉरिटी के ड्राई सीजन रेगुलेशन 2026 लागू हो रहे हैं। पीने के पानी से गाड़ियां धोने, पौधों की सिंचाई करने या स्विमिंग पूल भरने पर पाबंदी होगी। देश के जलाशय फिलहाल अपनी कुल क्षमता के करीब 61% तक भी भरे हैं, लेकिन सूखे का असर सिर्फ जलाशयों पर नहीं, भूमिगत जल और नदियों पर भी दबाव पड़ रहा है। पानी की स्थिति से निपटने के लिए सरकार का मार्शल प्लान भी अमल में है। इस पर हम हमारे इस बुलेटिन के दौरान एक बार फिर आएंगे। पानी के इस्तेमाल पर नई पाबंदियां कल से लागू हो रही हैं। इसका असर आम लोगों के साथ कई तरह की गतिविधियों पर भी पड़ेगा। कौवाश कारोबार को भी अब पानी के इस्तेमाल को लेकर नए नियमों के मुताबिक खुद को ढालना होगा। ऐसे समय में जब देश में पानी के भंडार पर लगातार दबाव बना हुआ है, कौवाश संचालक इन पाबंदियों के लिए कितने तैयार हैं, इस पर हम एक बार फिर हमारे अन्य बुलेटिनों में आएंगे। खबरों को आगे बढ़ाते हैं। नशे की लत युवाओं के लिए एक बढ़ती चिंता। डॉक्टर इद्रिस गुमानी ट्रीटमेंट सेंटर की आंकड़ों के मुताबिक 16 से 24 साल के करीब 1,00,000 युवा रोजाना ड्रग्स का सेवन करते हैं। नशे की रोकथाम और इलाज के क्षेत्र में काम करने वाली इस संस्था ने आज प्रनवेद की अल अक्सा मस्जिद के सहयोग से एक जागरूकता सत्र आयोजित किया। इस दौरान युवाओं को नशे के नुकसान और इससे दूर रहने के बारे में जानकारियां दी गई। कुणाल गुजी की रिपोर्ट पर याचना मिश्रा का विवरण।
1: प्लेनवेट के अलक्सा मस्जिद में 12 से 18 साल के नौजवानों के लिए ड्रग्स पर एक जागरूकता सत्र लगाया गया। डॉक्टर इद्रिस गुमानी ट्रीटमेंट सेंटर के आयोजकों के अनुसार कम उम्र से ही ड्रग्स के खिलाफ जागरूकता बढ़ाना जरूरी है, क्योंकि ड्रग्स के धीरे धीरे बढ़ रहे मस्तिष्क पर खतरनाक प्रभाव पड़ सकता है।
2: Nous faisons constater depuis ces cinq dernières années un rajeunissement dans la consommation des drogues en général, que ce soit la cigarette, l'alcool, le cannabis avec bien les autres produits illicites.
1: पिछले 5 सालों में ड्रग्स के आदि लोगों की आयु कम होती जा रही है। 19 साल का व्यक्ति 11-12 साल की उम्र से ही नशे का आदि होने लगता है। 20 साल पहले 26 से 29 साल के लोगों को ये समस्या होती थी, अब ये उम्र 18 से 24 साल हो गया है। इस पहल का मकसद है ड्रग्स के खतरे को कम करना, स्पष्ट और सही जानकारियां देना, दोस्तों के दबाव का सामना करने में नौजवानों को सक्षम बनाना।
3: Aujourd'hui, avec le problème de bullying dans l'école, le problème de peer pressure,
1: बुलिंग और दोस्तों का प्रभाव, ये एक बड़ी समस्या बन गई है। बच्चों को जागरूक करना जरूरी है कि वे इस जाल में न पड़े, क्योंकि इससे बच निकलना बहुत मुश्किल है। आयोजकों के अनुसार इस सत्र में शामिल कुल 26 युवाओं के ड्रग्स को लेकर विचार जमीनी हकीकत से काफी अलग हैं। औपचारिक आंकड़ों के मुताबिक करीब 55,000 युवा रोजाना मादक द्रव्यों का सेवन करते हैं। हालांकि डॉक्टर इद्रिस गुमानी केंद्र के अनुसार वास्तविक संख्या इससे दुगनी हो सकती है।
0: मॉरिशस की सड़कों को अब गूगल मैप्स पर उतारने की तैयारी है। इसके लिए वर्ल्ड ट्रैवल इन 360 की

0: टीम मॉरिशस में है और खास कैमरा से लैस तीन गाड़ियां देश भर की सड़कों की तस्वीरें खींच रही हैं। करीब 6000 किलोमीटर सड़कों को इस परियोजना में शामिल किया जाएगा। तस्वीरें तैयार होने के बाद इन्हें गूगल मैप्स के स्ट्रीट व्यू पर डाला जाएगा, जिससे पर्यटक और स्थानीय लोग मॉरिशस को देख सकेंगे। मॉरिशस के बाद रोड्रिग्स में भी ये काम किया जाएगा। दसापला स्वामी की रिपोर्ट पर एक बार फिर याशना मिश्रा का विवरण।
1: वे एक महीने तक देश का दौरा करके सभी सड़कों को नक्शे में उतारेंगे, साथ में पर्यटन स्थल भी, वो भी 360 डिग्रीज में। तीन गाड़ियां जिनके ऊपर कैमरे लगे हैं। वर्ल्ड ट्रैवल इन 360 से फ्रेडेरिको की टीम का काम है ऐसे चित्र कैमरे में उतारना। ये 8K में 360 डिग्रीज कैमरे हैं जो स्ट्रीट व्यू चित्र खींचते हैं। हम इसे साधारण गाड़ियों में डालकर इसे एप्लीकेशन के साथ जोड़ते हैं। ये देखते हैं कि कौन सी सड़कें बची हैं। हम सिर्फ अच्छे मौसम में ही बाहर निकलते हैं ताकि सबसे अच्छी तस्वीरें खींच पाएं। हर रोज गाड़ियां 250 किलोमीटर पार करती हैं। इस पोर्ट में देख पाते हैं कि 20% सड़कें नक्शे में उतार दी गई हैं। इस वक्त एक चालक एक मुख्य सड़क पर है। मॉरिशस में लगभग 6000 किलोमीटर सड़क है। चित्रों को सही रूप देकर गूगल मैप्स में डाला जाएगा। अंदाजा है कि 1.5 महीने लगेंगे चित्र खींचने में। 16 लोग इसमें जुड़े हैं 2 चरणों में। साल के अंत तक ये चित्र इंटरनेट पर आम होंगे। हिंद महासागर में मॉरिशस एकमात्र देश है जहां ये सेवा उपलब्ध है। इलाके के अन्य देशों की ओर भी हम बढ़ेंगे। 360 डिग्रीज फोटोज अब मुसाफिरों के लिए आम है। इस परियोजना से ज्यादा पर्यटक आकर्षित होंगे। मॉरिशस टूरिज्म प्रमोशन अथॉरिटी इस परियोजना के सही संचालन के लिए सभी मंजूरियां दे रही हैं। पर्यटकों और नागरिकों को इससे फायदा होगा। 3D और 360 में मॉरिशस को देखना, विश्व डिजिटल नक्शे में भी ये दिखेगा। मॉरिशस के बाद कैमरे रोड्रिग्स ले जाए जाएंगे।
0: आज शुक्रवार को आत्सू ने सैंक्वा इलाके में बड़ी कार्रवाई की। मेट्रो नॉर्थ डिवीजन से जुड़ी एक टीम ने एक बैग बरामद किया जिसमें नशीले पदार्थों के साथ पैकेट मिले। बरामद नशीले पदार्थों में मुख्य रूप से हेरोइन शामिल थी। इन्हें अलग अलग तरीकों से छिपा कर रखा गया था। कुछ पदार्थ सील्ड प्लास्टिक पैकेटों में और फूड रैप में पैक थे, जबकि 175 एल्यूमिनियम फॉइल में भी नशीले पदार्थ छिपाए गए थे। इसके अलावा सिंथेटिक कैनाबिनॉइड के 2 पैकेट भी बरामद किए गए। कुल मिलाकर करीब 549 ग्राम नशीले पदार्थ जब्त किए गए हैं, जिनकी अनुमानित बाजार कीमत 8.4 मिलियन मॉरिशन रुपए से अधिक बताई गई है। मामले की जांच जारी है। पुलिस अब नशीले पदार्थों के स्रोत का पता लगाने और इसमें शामिल लोगों की पहचान करने में जुटी हुई है। मानव तस्करी एक ऐसी समस्या है जो किसी एक देश या सीमा तक सीमित नहीं। मॉरिशस में फिलहाल मानव तस्करी के 34 पीड़ितों की देखभाल एनजीओज कर रही हैं। इनमें 2 नाबालिग भी शामिल हैं। वहीं 21 मामलों की पुलिस जांच या कार्रवाई जारी है। देश में ऐसे मामलों की संख्या फिलहाल सीमित है, लेकिन इनसे निपटने के लिए गैर सरकारी संगठन, अधिकारियों और अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों के सहयोग से कई व्यवस्थाएं मौजूद हैं। दुनिया में भूख की समस्या में मामूली सुधार जरूर हुआ है, लेकिन आज भी करोड़ों लोगों को भरपेट भोजन नहीं मिल रहा। संयुक्त राष्ट्र की खाद्य और कृषि संस्था FAO की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक अफ्रीका में स्थिति अब भी चिंता का विषय बनी हुई है। वहीं मध्य पूर्व में जारी युद्ध ने मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। मॉरिशस में भी कई परिवारों के लिए भरपेट और पौष्टिक भोजन जुटाना आसान नहीं है। संस्था सिरियों सुलई के मुताबिक खासकर बच्चों को सही पोषण देने में कई परिवारों को परेशानी हो रही है। संस्था का कहना है कि कुपोषण से निपटने के लिए अभी और प्रयास की जरूरत है। भक्ति की परंपरा, श्री कृष्ण भगवान के प्रति आस्था और पीढ़ियों तक आगे बढ़ता आध्यात्मिक संदेश, इसको उनके लिए ये साल 2 खास पड़ाव लेकर आया है। संस्था अपनी संस्थापना के 60 साल पूरे

0: कर रही हैं। वहीं मॉरिशस में इसके संस्थापक शीला प्रभुपाद की ऐतिहासिक यात्रा के भी 50 साल पूरे हो रहे हैं। आधा शताब्दी बाद भी उनकी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत मॉरिशस में जीवंत है। याश्रा मिश्रा।
1: भगवद गीता की शिक्षाओं को बढ़ावा देना और कृष्ण चेतना का संदेश लोगों तक पहुंचाना, इसी उद्देश्य के साथ भारतीय दार्शनिक भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद ने 1966 में न्यूयॉर्क में इस्कॉन की स्थापना की। आज दुनिया भर में 800 से अधिक संस्थाएं उनके संदेश के प्रसार में योगदान दे रही हैं। आध्यात्मिक गुरु भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद ने 1975 में मॉरिशस का दौरा किया। देश की उनकी एकमात्र यात्रा ने यहाँ के सदस्यों पर गहरी छाप छोड़ी और मॉरिशस में इस आंदोलन की नींव रखने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। कृष्णा कॉन्शियसनेस शास्त्रों से प्राप्त ज्ञान है जिसे पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ावा दिया जा रहा है। ये हमें सिखाता है कि हम कौन हैं, प्रभु के साथ हमारा संबंध क्या है और हमें कैसे जीना चाहिए। प्रभुपाद को 1975 में उस वक्त के प्रधानमंत्री सचिव सागर राम गुलाम ने आमंत्रित किया था। मॉरिशस में इस्कॉन की स्थापना को 60 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन स्वामी प्रभुपाद द्वारा दी गई शिक्षाएं और मूल्य आज भी इस विरासत का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। हम कृष्ण भक्त हैं और हमें सभी जीव प्रिय हैं। हम भगवद गीता और श्रीमद् भागवत की शिक्षाओं को बढ़ावा दे रहे हैं। इन दो महत्वपूर्ण घटनाओं की स्मृति में मॉरिशस पोस्ट के सहयोग से एक स्पेशल डे कवर तैयार किया गया। इसका अनावरण गणराज्य के राष्ट्रपति धर्मवीर गोकुल ने किया।
0: जिसे कुछ देर पहले हम आपको बता रहे थे कि पानी के इस्तेमाल पर नई पाबंदियां कल से लागू हो रही हैं। इसका असर आम लोगों के साथ साथ कई तरह की गतिविधियों पर भी पड़ेगा। कौवाश कारोबार को भी अब पानी के इस्तेमाल को लेकर नए नियमों के मुताबिक खुद को ढालना होगा। ऐसे समय में जब देश में पानी के भंडार पर लगातार दबाव बना हुआ है, कौवाश संचालक इन पाबंदियों के लिए कितने तैयार हैं, सुनते हैं इस रिपोर्ट में संतना पोसनो की रिपोर्ट पर अदिति अवतार का विवरण।
2: सेंट्रल वाटर अथॉरिटी के नए नियम लागू होने से पहले इस रविवार कई लोगों ने अपनी गाड़ियों की सफाई करवाई। कौवाश स्टेशनों पर कामकाज सामान्य रूप से चला, हालांकि इस सोमवार से गाड़ी धोने की आदतें बदलनी होंगी। इस स्थिति को देखते हुए कुछ लोगों ने तैयारी के लिए कदम भी उठा लिए हैं। खासतौर पर वाटर सप्लाई नेटवर्क पर दबाव कम करते हुए कामकाज जारी रखने के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग एक पसंदीदा समाधान है। इस सिस्टम से काम चलता रहता है बशर्ते पानी का काफी भंडार मौजूद हो। हालांकि कई हफ्तों से बारिश कम पड़ी है और कुछ कारोबार मालिकों के लिए अनिश्चितता का माहौल पहले से ही काफी गंभीर हो गया है। कुछ लोगों ने पाबंदियां लागू होने से पहले ही तैयारी शुरू कर दी है। नए नियम लागू होने से पहले रविवार को टूरिज्म अथॉरिटी की टीमें जरूरी सफाई के कामों में जुटी रही। याद रहे कि CW की पाबंदियों में गाड़ियां धोने, घर आंगन की सफाई, बगीचों में सिंचाई और स्विमिंग पूल भरने जैसी गतिविधियां शामिल हैं। ये पाबंदियां इस सोमवार 10 अगस्त से लागू होंगी और अगले 30 नवंबर तक जारी रहेंगी।
0: मानव तस्करी एक ऐसी समस्या है जो किसी एक देश या सीमा तक सीमित नहीं। मॉरिशस में फिलहाल मानव तस्करी के 34 पीड़ितों की देखभाल NGOs कर रही हैं। इनमें दो नाबालिग भी शामिल हैं, लेकिन इनसे निपटने के लिए गैर सरकारी संगठन, अधिकारियों और अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों के सहयोग से कई व्यवस्थाएं भी मौजूद हैं। ज्यादा जानकारी मानवी जगन्नाथ की रिपोर्ट पर अदिति अवतार का विवरण।
2: मानव तस्करी

0: करी में लोगों का शोषण होता है, चाहे वे विदेशी नागरिक हों या स्थानीय लोग। इसके सबसे आम रूप हैं जबरन मजदूरी, यौन शोषण और जबरदस्ती भीख मंगवाना। मॉरिशस में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन संयुक्त राष्ट्र की देखरेख में चार प्रमुख स्तंभों पर आधारित एक व्यवस्थित तरीका अपनाकर इस समस्या से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।
1: We look at partnerships.
0: IOM की चीफ ऑफ मिशन आलिया हिरजी कहती हैं, हम साझेदारी, पीड़ितों की सुरक्षा, न्यायिक प्रोसिक्यूशन और रोकथाम पर बल देते हैं। मैं मॉरिशस सरकार की प्रशंसा करती हूं, जो इस सिलसिले में महत्वपूर्ण बदलाव लाने के लिए कटिबद्ध हैं और इसके लिए हमारी संस्था से समर्थन की मांग की गई है। हम देखेंगे कि किस तरह हम आपसी सहयोग बढ़ा सकें, जिससे मानव तस्करी के खिलाफ संघर्ष तेज की जा सके। मॉरिशस में ह्यूमन ट्रैफिकिंग की समस्या गंभीर नहीं है, लेकिन इस तरह का एक भी पीड़ित होना बड़ी बात मानी जाती है।
1: It's really not that big, but still one victim is too many.
0: मानव तस्करी के खिलाफ संघर्ष व्यवस्थित और मजबूत करने की दिशा में IOM ने पिछले दिसंबर महीने में प्रधानमंत्री दफ्तर के समक्ष एक महत्वाकांक्षी कानूनी ढांचा प्रस्तुत किया। IOM की प्रोग्राम एसोसिएट जानवी गुरा कहती हैं, जरूरी है कि जागरूकता और तेज की जाए, विभिन्न साझेदारों की तरफ से अलग अलग पहलुओं के प्रयास होने चाहिए। इसके साथ ही कार्य योजना में इस बात पर भी बल दिया गया है कि पुरुषों के पीड़ित होने के पहलू पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। पास्कल जैसे गैर सरकारी संगठन ह्यूमन ट्रैफिकिंग के पीड़ितों की मदद के वास्ते अथक प्रयास करते हैं। अभी ऐसे 34 लोगों की देखभाल की जा रही है, जिनमें दो नाबालिग भी शामिल हैं। पास्कल की निदेशिका मिलानी वालिया कहती हैं, जैसे ही पीड़ित शेल्टर में आते हैं तो हम उनकी समस्याओं का जायजा लेते हैं। कई लोग ट्रोमा से गुजरते हैं, दुर्भाग्यवश इसके लिए काफी समय लग जाता है, कुछ मामलों में 3 साल तक लग रहे हैं। हम उन्हें प्रशिक्षण देते हैं और आत्मनिर्भरता के प्रोग्राम भी चलाते हैं, क्योंकि उन्हें में गवाही के लिए रहना पड़ता है। इस संघर्ष में विभिन्न टापुओं के बीच सहयोग महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जिसके लिए गैर सरकारी संगठन जीमुआ अहम भूमिका निभा रहा है। हिंद महासागर के लिए संगठन के निदेशक यूलान ओडोल कहते हैं, मानव तस्करी जैसे अपराध के ज्यादातर पीड़ित मारागास्कर से होते हैं। जीमुआ की वहाँ भी एक शाखा है। हम विशेष रूप से जागरूकता पर बल देते हैं, जानकारियों की कमी से आसानी से ये अपराध किए जा सकते हैं। लाइन बैरक्स स्थित पुलिस की कम्बैटिंग ऑफ ट्रैफिकिंग इन पर्सन्स यूनिट लगभग 3 सालों से कार्यरत है। इसके अंतर्गत अभी इस तरह के 21 मामलों की जांच चल रही है। चीफ इंस्पेक्टर मोहम्मद शहजाद नाजिर अली कहते हैं, अगर किसी व्यक्ति को मानव तस्करी के लिए दोषी पाया जाता है तो उसे 20 साल तक कैद की सजा हो सकती है। यदि परिस्थितियाँ गंभीर हो, जैसे यदि पीड़ित कोई बच्चा हो, कोई पत्नी हो, या यदि पीड़ित को ड्रग्स या और कोई नशा दिया गया हो जिससे उसका गलत इस्तेमाल किया जा सके। पुलिस की कम्बैटिंग ऑफ ट्रैफिकिंग इन पर्सन्स यूनिट ने 148 की एक हॉटलाइन, एक व्हाट्सएप नंबर और एक खास ईमेल जारी किया है, जिससे कोई भी व्यक्ति किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी गुमनाम तरीके से दे सकता है।
2: कई साल की देरी के बाद तनमानियों में DBM के SME पार्क का काम जल्द फिर शुरू होने की उम्मीद है। बाढ़ और सुरक्षा से जुड़े खतरों के कारण इस परियोजना का काम रोक दिया गया था। छोटे और मध्यम कारोबारों के लिए बनाए जा रहे इस SME पार्क पर अब तक करीब 200 मिलियन रुपए खर्च किए जा चुके हैं। दैविक राजकुमार, याचना मिश्रा।
3: 2020 में प्लेनमायों में छोटे और मध्यम उद्योगों के इंडस्ट्रियल पार्क के कार्य रोक दिए गए। कारण 2022 में उत्पन्न बाढ़। तब से स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है और सुरक्षा से जुड़े खतरे भी बढ़ रहे हैं। समस्या के समाधान के लिए अब एक रिटेंशन बेसिन का निर्माण किया जाएगा। कार्य रोके गए क्योंकि जब जगह चुनी गई तो कोई अध्ययन नहीं किया गया और बाढ़ के कारण यहां पानी जमा हुआ। LDA जिला परिषद ने अनुमति नहीं दी। सभी अध्ययनों के बाद अब एक रिटेंशन बेसिन बनाया जाएगा, बाढ़ का पानी वहां जमा होगा। कार्य 70% पूरे हो गए हैं। बनने के बाद DBM के इस पार्क में ठेकेदारों के लिए 40 जगह उपलब्ध होंगे।
4: Une demande accrue pour ça, une demande de remplacement pour un PME.
3: कई मांगे मिली हैं, 40 स्टॉल्स होंगे। यदि हर एक एसएमई के लिए 10 लोग होंगे तो लगभग 400 नौकरियां पैदा होंगी, उत्पादकता बढ़ेगी। चुनाव क्षेत्र के सांसदों के अनुसार लंबे समय से इस परियोजना का इंतजार हो रहा है। आज बैठक लगी देखने के लिए कि इस परियोजना को कैसे आगे बढ़ाया जाए ताकि यहाँ के निवासी भी एक उद्योग शुरू कर
4: पाएं।
3: कई मांगे मिली जहाँ लोग इलाके में ही स्थान ढूंढ रहे हैं, ये एक सुनहरा मौका है उनके लिए। बाढ़ से बचाव के लिए लैंड ड्रेनेज अथॉरिटी भी कार्य चला रहा है। रिटेंशन बेसिन और पार्क के निर्माण कार्य एक साथ चलाए जाएंगे।
2: टेक्निक, रफ्तार और नई सोच के साथ अब लक्ष्य विश्व मंच का है। स्टेम रेसिंग मॉरिशस से जीतने के बाद 37 कॉलेज के ग्रेड 12 के छात्र वर्ल्ड फाइनल की तैयारी में जुटे हैं। टीम सीएसई वेलोसिटी अक्टूबर में सिंगापुर में मॉरिशस का प्रतिनिधित्व करेगी। फिलहाल टीम अपनी नई रेसिंग कार की रफ्तार और परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने पर काम कर रही है। 3 दशकों के सफर के बाद पिल्स अब एक नए रूप में आगे बढ़ रही है। एचआईवी को लेकर जागरूकता फैलाने और इससे प्रभावित लोगों तक मदद पहुंचाने के लिए काम और मजबूत करने के लिए संस्था ने नई पहचान पेश की है। इसमें नया लोगो, नई जागरूकता मुहिम और आने वाले समय में नई डिजिटल सुविधाएं शामिल हैं। पोर्ट लुइस के नूविला कम्युनिटी सेंटर में आयोजित एक समारोह में नए लोगो की लॉन्चिंग की गई।
5: Une nouvelle identité pour l'ONG Plus, afin d'être une porte d'entrée et d'encourager ceux touchés par le VIH à venir de l'avant. Cette réinvention s'inscrit dans le cadre des 30 ans de l'organisation au sein de la société mauricienne.
6: संगठन के 30 साल पूरे होने के अवसर पर किया गया है। एनजीओ के संस्थापक निकोला रिटर कहते हैं, 30 साल से पिल्स को प्रणाली के अनुसार काम करना पड़ा। हमने प्रस्ताव रखा, नयापन लाया गया और ये दिखाया कि लोगों को इलाज प्रदान किया गया है स्वास्थ्य मंत्रालय के सहयोग से अस्पतालों के बाहर। इस नई पहचान का अनावरण एनजीओ के नूविला सामुदायिक केंद्र में किया गया, जिसमें संगठन के सहयोगी और साझेदार भी मौजूद थे। इसके तहत रोकथाम और जागरूकता के लिए एक नया अभियान भी शुरू किया गया है, जिसका खास तौर पर युवाओं को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। इसके कार्यकारी निदेशक जोएल सामन कहते हैं, यौन संबंधी स्वास्थ्य पर भी ध्यान दे रहा है क्योंकि नौजवान लोग नाजुक वर्ग के हैं, कम उम्र से ही उनके बीच जागरूकता फैला रहे हैं। लोगों के लिए जानकारी और सेवाओं तक पहुंच आसान बनाने के उद्देश्य से एक नई वेबसाइट भी शुरू की जाएगी। इसके साथ एक मोबाइल ऐप भी होगा। दोनों को इस साल नवंबर तक लॉन्च किए जाने की उम्मीद है।
2: और विदेश में जो खबरें हैं सुर्खियों में, एक बम, कुछ ही पल और एक शहर की तस्वीर हमेशा के लिए बदल गई। 9 अगस्त 1945 को जापान के नागासाकी पर गिराए गए परमाणु बम ने हजारों जिंदगियां छीन ली और दुनिया को परमाणु हथियारों की विनाशकारी ताकत दिखाई। आज उस घटना के 81 साल पूरे हो गए हैं। क्या हुआ था उस दिन और इतिहास में क्यों हमेशा के लिए दर्ज हो गया नागासाकी, सुनते हैं।
7: 9 अगस्त 1945 दूसरे विश्व युद्ध के आखिरी दिनों में अमेरिका ने जापान के नागासाकी शहर पर परमाणु बम गिराया था। आज इस हमले के 81 साल पूरे हो गए हैं। नागासाकी पर गिराए गए प्लूटोनियम बम का नाम फैटमैन था। इसे अमेरिकी B-29 विमान से सुबह 11:02 पर गिराया गया था। इस हमले में 1945 के अंत तक करीब 70,000 लोगों की मौत हुई थी। इससे सिर्फ 3 दिन पहले 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर पहला परमाणु बम गिराया गया था, जिसमें उसी साल के अंत तक करीब 140,000 लोगों की जान गई थी। इन दोनों हमलों के कुछ दिनों बाद 15 अगस्त को जापान ने आत्मसमर्पण की घोषणा की और दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ। आज नागासाकी और हिरोशिमा के परमाणु हमलों में जीवित बचे लोगों की संख्या घटकर 91,105 रह गई है। जापान में इन्हें हिबाकुशा कहा जाता है। उनकी औसत उम्र अब 86 वर्ष से अधिक है। समय बीतने

0: के साथ इन घटनाओं के प्रत्यक्ष गवाहों की संख्या लगातार कम हो रही है।
1: कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में जंगल की आग बेकाबू होती जा रही है। तेजी से फैलती आग के कारण प्रांत में आपातकाल की घोषणा कर दी गई और हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने का आदेश दिया गया है। आग रातों रात लगभग दुगनी होकर 9,500 हेक्टेयर से ज्यादा क्षेत्र में फैल गई। कई मकान और संपत्तियां भी इसकी चपेट में आई हैं। उधर स्पेन के कुछ हिस्सों में भी भीषण गर्मी के बीच जंगल की आग का सामना करना पड़ रहा है। और अब बात करें कुछ अलग, कश्मीर की खूबसूरत वादियों से लेकर मणिपुर की रंग बिरंगी संस्कृति तक भारत के अलग अलग हिस्सों में प्रकृति, खेती और परंपराओं का अपना एक खास रंग है। कश्मीर में सेब की सदियों पुरानी पहचान अब हाई डेंसिटी खेती जैसी आधुनिक टेक्निक के साथ नया रूप ले रही है। तो मणिपुर में नवा तंगमय उत्सव यानी खीरा उत्सव स्थानीय उपज के साथ पारंपरिक गीत संगीत नृत्य और संस्कृति की खूबसूरती को सामने ला रही है।
0: खूबसूरत वादियां, दूर तक फैले पहाड़, ठंडी हवाएं और इनके बीच सेब से लदे बाग, कश्मीर की तस्वीर से सेब को अलग करना शायद मुश्किल है। यहां सेब सिर्फ एक फल नहीं बल्कि पीढ़ियों से चलती आ रही खेती की परंपरा और हजारों परिवारों की रोजी रोटी का अहम हिस्सा है। अब बदलते समय के साथ इन बागों में नई टेक्निक भी अपनी जगह बना रही है। हाई डेंसिटी खेती के तहत कम दूरी पर ज्यादा पेड़ लगाए जाते हैं। पारंपरिक बागों के मुकाबले ये पेड़ जल्दी फल देना शुरू करते हैं और किसानों को बेहतर पैदावार हासिल करने में मदद करते हैं। कतारों में सजे छोटे छोटे पेड़ और उनकी शाखाओं पर लगे चमकते लाल सेब इन बागों को एक अलग ही खूबसूरती देते हैं। रंग बिरंगे पारंपरिक परिधान, लोक संगीत की धुन और मणिपुर की संस्कृति की खूबसूरत झलक। मौका था नौवे टैंगमई उत्सव यानी खीरा उत्सव का, जहां एक साधारण सी फसल के बहाने स्थानीय संस्कृति के कई रंग एक साथ देखने को मिले। उत्सव में स्थानीय किसानों की उपज और अलग अलग किस्मों के खीरे प्रदर्शित किए गए, लेकिन समारोह की रौनक सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं रही। पारंपरिक गीत संगीत और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने मणिपुर की समृद्ध विरासत को मंच पर जीवंत कर दिया। ये उत्सव स्थानीय किसानों को प्रोत्साहित करने के साथ अपनी परंपराओं और संस्कृति को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का भी एक खूबसूरत जरिया है।
1: बढ़ते हैं अब हम मौसम संबंधी जानकारी की ओर यात्रा मिश्रा के साथ।
2: पूर्व से आ रहे सक्रिय बादल स्थानीय मौसम को प्रभावित कर रहे हैं। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान, आज रात और कल सुबह पूर्वी इलाकों और सेंट्रल प्लेटों पर बादल घिरे रहेंगे और रह रहकर बारिश होगी। ऊंचाइयों पर कोहरा छाया रहेगा। दोपहर बाद भी मौसम बरसाती रहेगा। हवा पूर्व दक्षिण पूर्व की ओर से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी, जिसके झोंके कहीं कहीं पर 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकते हैं। प्रवालेखा के परे 3 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। दूर समंदर तथा पश्चिमी, पूर्वी और दक्षिणी लगूनों में न जाने की सलाह दी जाती है। न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लेटो पर 17 से 19, अधिकतम 22 से 24, जबकि तटवर्ती इलाकों पर न्यूनतम तापमान 21 से 23 और अधिकतम 26 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। कल सुबह सूर्योदय 6:35 पर, शाम को सूर्यास्त 5:55 पर होगा।

इसके साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हो चला है। इसकी तैयारी में पूरे समाचार डेस्क का सहयोग प्राप्त हुआ, जिन्हें हम धन्यवाद देते हैं। कंसल पर हमारे सहयोगी शिव हैं, उन्हें भी हम धन्यवाद देते हैं। सुनने वालों को भी आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। साथ रहिए, बढ़ते हम शुभ समाचारों की ओर। शुभ समाचार सुनिए। लतापी रोड बोनाकोई में, लतापी रोड बोनाकोई में 77 साल की 77 ईयर्स ओल्ड की श्री रामस्वरूप निरंजन, जिन्हें धर्म के नाम से लोग ज्यादा जानते थे, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल 2:45 पर उनके बहनोई देवेंद्र राव के घर बोनाकोई से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए लामोचा की शमशान भूमि ली जाएगी। कमीशन

15 PM। कनाल लेन पालमा काठरबोन में कनाल लेन पालमा काठरबोन में 76 साल के 76 years old के श्री हीरालाल रामबन, श्री हीरालाल रामबन जेंजीवन के नाम से लोग ज्यादा जानते थे, कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के 1 बजे उनकी पत्नी श्रीमती वीना रामबन के घर पालमा काठरबोन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गांधी पालमा की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। मिशन टुमोरो 1 PM। ब्रांच रोड लालमाटी में 65 साल के 65 years old के श्री सुनीलाल रूपना जिन्हें सुनील के नाम से भी लोग ज्यादा जानते थे, कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल सुबह 11 बजे उनकी पत्नी बबीता रूपना के घर लालमाटी से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए लावोंचा की शमशान भूमि ली जाएगी। क्रीमेशन टुमोरो एट 11 AM। गृधारी रोड कैथोसियो में 76 साल के 76 years old के श्री महेंद्र गृधारी जिन्हें सीता के नाम से भी लोग ज्यादा जानते थे, कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के 1 बजे उनके बेटे कुसी वर्मा गृधारी के घर कैथोसियो से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बोशों की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमिशन टुमोरो 1 PM। रुद्बासें कैट्रोबोन में 89 साल के 89 years old के श्री अंबीराव जयवंत सोनू जिन्हें अंबीराव के नाम से लोग ज्यादा जानते थे और जो पहले मेजिन शुगर स्टेट में काम करते थे, कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल सुबह 9:30 बजे उनके घर कैट्रोबोन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गांधी पालमा की शमशान भूमि ले जाएगी। क्रिमिशन टुमोरो 8:30 AM। रुद्पांचू स्टैनली रोजिल में 74 साल की 74 years old की श्री भवानी दीन तिलोती पैदाशी नाम सनसनरुआ और जिन्हें शर्मा के नाम से भी लोग ज्यादा जानते थे, कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल सुबह 10 बजे उनके घर स्थानीय रोजिल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए कोदेगोद कॉलिव्यू की शमशान भूमि ले जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो 10 AM। कांडालेन रोजिल में 76 साल की 76 years old की श्रीमती मिनियामा इरापा पैदाश नाम कौपेन और जिन्हें अति के नाम से लोग ज्यादा जानते थे, कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के 12:30 बजे उनके घर ट्रेफल रोजिल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए कोदिगौत की शमशान भूमि ले जाएगी। क्रिमिशन टुमोरो 8:30 AM। स्कूल लेन कुतेज में 64 साल की 64 years old की श्रीमती मानती बिकन पैदाशाम राम नारायण और जिन्हें मानती के नाम से भी लोग ज्यादा जानती थी, कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के 1 बजे उनके पति देवानंद बिकन के घर कुतेज से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए वहीं की शमशान भूमि ले जाएगी। क्रिमिशन टुमोरो 1 PM। लेस्पेरांस ट्रेबुशे में 57 साल की 57 years old की श्रीमती महालक्ष्मी पुनित पैदाशी नाम सलांदी और जिन्हें रेखा के नाम से लोग ज्यादा जानते थे, कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल सुबह 10:30 बजे उनके घर लेस्पेरांस ट्रेबुशे से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए वहीं की शमशान भूमि ले जाएगी। क्रिमिशन टुमोरो 8:10 AM। शोक में डूबे इन सभी परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है।

MBC Radio 24 hours a day. सीबी की ओर से एक जरूरी विज्ञप्ति सुनिए। सीबी के इन ग्राहकों को सूचित किया जाता है जो बेलोम्ब और सैमौतें बेजकप में रहते हैं कि आगामी मंगलवार 11 अगस्त 2026 को प्रातःकाल के 9 से शाम के 4 बजे तक मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली की आपूर्ति में कटौती लाई जाएगी। सीबी सभी ग्राहकों को सूचित करती हैं कि जैसे ही सभी मरम्मत कार्य समाप्त हो जाएंगे तैसे ही सुचारू रूप से बिजली फिर से जारी कर दी जाएगी बिना कोई पूर्व सूचना से।

0: Center 95.5, North South 95.6, East West 98.2.
1: You are listening your RM3 Manoranjan Radio.
2: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
3: छः बजकर 37 मिनट हुए हैं दोस्तों, नमस्कार आप सबको। आप लोग जुड़े हुए हैं रेडियो मनोरंजन के साथ RM Free Radio और मैं उषा कौर यहाँ पर साथ निभाने के लिए, जहाँ आज रविवार 9 अगस्त 2026 और आप हमें सुन रहे हैं। अभी मौसम जो है बारिश हो रही है, मौसम बहुत ही ख़राब है। वैसे कुछ लोग काम पर जा रहे हैं या फिर बाहर जा रहे हैं गाड़ी चला कर, तो हम आपको ये कहेंगे सो टू ड्राइव केयरफुली। और यहाँ पर नई सोच कार्यक्रम चलाएंगे, आप सुन पाएंगे कुछ भावगीत और ये कार्यक्रम 7 बजे तक आप एंजॉय कर पाएंगे। नई सोच प्रोग्राम आपके नाम, कहते हैं ना ज़िंदगी में मुश्किलें इसलिए नहीं आते कि हम हार जाए, बल्कि इसलिए आती है कि हम अपनी असली ताकत पहचान सके। तो चलिए, सत्य पे सत्ता फिल्म से लिया गया ये प्यारा सा तराना आपके नाम।

0: नहीं सो।
1: दोस्तों, जिंदगी में हम सब कुछ पाना चाहते हैं, कामयाबी, सुकून, मोहब्बत, इज्जत और अपने सपनों की मंजिल। लेकिन जिंदगी हमें ये भी सिखाती है कि हर चीज एक साथ नहीं मिलती। कुछ चीजें वक्त लेती हैं, कुछ के लिए इंतजार करना पड़ता है और कुछ चीजें हमें तब मिलती है जब हम उनके लायक बन चुके होते हैं। इसलिए अगर आज आपकी जिंदगी में कुछ उधार अधूरा है तो मायूस मत होइए, शायद कहानी अभी बाकी है। अपनी मेहनत जारी रखिए, उम्मीद को जिंदा रखिए और अपने सफ़र पर भरोसा रखिए, क्योंकि ज़िंदगी में हर चीज़ पाना ज़रूरी नहीं। कभी कभी जो मिलता है वही हमें वो इंसान बना देता है जो हम बनना चाहते थे। इसी के साथ ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त हो चला। 6:53 हुए हैं और नई सोच कार्यक्रम प्रोग्राम इस गीत के साथ समाप्त होता है, लेकिन आप कहीं मत जाएगा, दिलों की आवाज़ प्रोग्राम इसके बाद।

जहाँ 7:02 हुए हैं, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आप लोग जुड़े हुए हैं आरएम फ्री रेडियो, रेडियो मनोरंजन के साथ। चलिए, नई सोच कार्यक्रम आपने सुना, अब बारी है दिलों की आवाज़ प्रोग्राम। और इस कार्यक्रम में साथ निभाने के लिए मैं उषा कौर, जी हाँ 9 बजे तक आप ही साथ दीजिएगा। और इस खूबसूरत मौसम में, कहते हैं ना, बरसात की जो बूंदें हैं जब ज़मीन पर गिरती है तो लगता है जैसे कुदरत खुद कोई मधुर गीत गा रही है। और यहाँ पर ऐसे ऐसे गाने आप लोगों के लिए हम चलाएंगे, 80s और 90s के खूबसूरत गाने। आप जहाँ पर भी है इस समय, बस इस मौके का फ़ायदा उठाइए और खूब रिलैक्स कीजिए अपनों के साथ। चाहे आप अकेले भी क्यों ना हो, लेकिन हर एक धुन के साथ आप भी गुनगुनाइए। हमारा जो नंबर है 4 0 2 8 0 7 0 4 0 2 8 0 7 0, और मैसेजेस आप कर सकते हैं ऑन 5 2 5 0 6 2 0 0।

दिल का आलम जी हाँ आशिकी वन से लिया गया ये प्यारा गाना सुनते हैं और ये गाना जाएगा संगीता जी के लिए जो हमें सुन रही है क्यू पिप से और खासकर वो गाना डेडिकेट कर रही है अपने सभी दोस्तों के लिए जो इस समय हॉस्पिटल कॉडियाक यूनिक में काम कर रहे हैं सो दिस सॉन्ग आप लोगों के लिए कुमार शानू की आवाज़ में

चले दोस्तों एक बार फिर से को सुनते हैं कुमार सानू की आवाज़ और ये गाना फिल्म सैनिक से दिया गया जी नहीं ये है नाराज फिल्म और ये गाना खासकर लालिनी के लिए जो हमें सुन रही है फ्रॉम वाक्वा खासकर गाना जाएगा उनके लिए और उनके परिवार के लिए साथ देने के लिए थैंक यू सो मच 4028070402807 हमें आप कॉल कर सकते हैं और साथ में मैसेजेस आप भेज रहे हैं 5250620

0: दिलों की आवाज, की आवाज, दिलों की आवाज।
1: पौने आठ बज चुके हैं और आप सुन रहे हैं दिलों की आवाज प्रोग्राम ऑन रेडियो मनोरंजन और एम फ्री रेडियो। बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पर जैसे कि आप जानते हैं, हमेशा की तरह हम लाइव टिकटॉक भी करते हैं, काफ़ी लोग जुड़ पाते हैं हमारे साथ। और इस प्रोग्राम को और रंगीन बनाने के लिए बस ऐसे ही हम जुड़े रहते हैं। यहाँ पर हमें सुन रहे हैं विदिता, हेलो टू यू। और साथ में है पूजा, गाना वो मांग रही हैं अपने हस्बैंड विकी के लिए। और साथ में बेटी हैं सिया फ्रॉम रोशबुआ। सूरज सजादा जी हैं जो कोई भी प्रोग्राम मिस नहीं करते हैं, हमेशा सुनते हैं। और श्यामा माहिराली, हेलो टू यू। द बॉस जो है वो भी है, साथ जुड़े हुए हैं। और तान्या सिबालक, हाय। आश जो है वो गाना मांग रही है विक्षा और विदिशा के लिए। अच्छा, तो वो लोग कल स्कूल पर जा रहे हैं, तो चलिए उनको हम बों कुआश कहते हैं। और यहाँ पर आपको याद दिला दे, 80s और 90s के गाने हम चला रहे हैं, सिर्फ 80s और 90s के गाने। थैंक यू फॉर लिसनिंग। चलिए आतिफ असलम का ये अगला गीत

0: दिलों की आवाज, दिलों की आवाज, दिलों की आवाज।
1: सात बजकर 52 मिनट हुए हैं, चले बढ़ते हैं आगे दिलों की आवाज़ प्रोग्राम। यहाँ पर शिमा है जो हमें सुन रही है, एडविन है और साथ ही साथ में सनशाइन। वैसे आप अपना असली नाम नहीं बताते हैं, तो फिर भी जो भी नाम आपने लिखा है यहाँ पर वही लेंगे। और सूरज सजादा आपके नाम जाएगा अगला गाना अंशु के लिए। विशाल नमस्ते आपको। और साथ में है माया हमडोस, जी हाँ आपको हम नमस्ते कहते हैं। और जितेंद्र लुआ आपको भी, दिनेश गोपी, शोभा जी जो रहती है वाकुआ।

0: दिलों की आवाज, दिलों की आवाज, दिलों की आवाज।
1: जहाँ दिलों की आवाज़ प्रोग्राम आपके नाम और यहाँ पर काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं। रात के आठ बज चुके हैं। अगर आप लोग डिनर कर रहे हैं तो बोन अपेटी, शुभ आहार आप सबको, एंजॉय योर मील। और यहाँ पर गाना हम चलाने जा रहे हैं रोहित के लिए, विमला, लक्ष्मण, शिल्पा जो हमें सुन रही है फ्रॉम पोर्ट लुइस, करुणा राम आपके नाम, और साथ में मनीष कुबलाल आपके लिए भी गाना हम चलाएंगे। आशीष कुमार आपके नाम जाएगा अगला गाना, हमारी प्यारी गायत्री बिशन दत्त आपके लिए भी। फना रंभा जी है गाना मांग रही है अपने टीम के लिए जो लेस्कालिया में रहते हैं। शैलिंदर गिल जो साथ दे रहे हैं, थैंक यू सो मच। और आप हैं कैलाश चंद्रा सरकार, आपके लिए भी हम गाना चलाएंगे बिल्कुल। और आप हैं पूर्णिमा, आपके नाम जाएगा अगला गाना। रोशन के लिए निर्मनी, निवेद आपके नाम, हांसले फिदेली, कतिबा मोंगो जी हाँ, आज उनकी बेटी का जन्मदिन है तो बेस्ट विशेस टू हर। और नीलम है जो हमें सुन रही हैं फ्रॉम कनाडा, आपके नाम भी जाएगा अगला गाना। तो चले सुनते हैं 80s का ये प्यारा सा तराना, मौसम प्यार का बस रंग बदलता रहता है, रंग बदले लेकिन हमें नहीं बदलना चाहिए, जैसे है ऐसा ही रहना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग हमें पसंद करते हैं जैसे हम हैं।

0: दिलों की आवाज, की आवाज, दिलों की आवाज।
1: आज बजकर 60 मिनट हुए हैं और यहाँ पर हमें सुन रहे हैं फ्रॉम सुरीनाम काफी लोग और यहाँ पर विशा है जो रहती है यूके साथ दे रही है, नमस्ते आपको। निवेद है और साथ में आशा जो रहती है कैटरबोर्न

नहीं आप है वेदना फ्रॉम काठरबोन हेलो टू यू हंशिका के लिए जी हाँ प्यारी हंशिका दो साल की हो रही है आज उनके नाम अगला गाना हम डेडिकेट कर रहे हैं केशो के लिए और जेविना है हेलो टू यू निर्मणि जी आपके नाम जाएगा अगला गाना उर्मिला दुखिया निजाम बहादुर निरेला जो है गाना मांग रही है अपने हस्बैंड के लिए और आज उनका जन्मदिन है तो ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद फ्रॉम आहुलेन अक्षी और काव्यन थैंक यू जेविना बस प्रोग्राम को आप लोग एंजॉय करें आकाश के नाम जाएगा अगला गाना और साथ में रेहाना के लिए जो हमें सुन रही है फ्रॉम फिनिक्स साथ ही फिल्म से लिया गया साधना सरगम और मुर्तुजा खादिर की आवाज़ों में

0: दिलों की आवाज की आवाज दिलों की आवाज
1: वैसे अभी तो काफ़ी लोग एंजॉय कर रहे हैं क्योंकि कुछ लोग शादी में हैं इस समय और बिरयानी खा रहे हैं। सो एंजॉय योर बिरयानी। और ये गाना जाएगा निज़ाम बहादुर के लिए, अब्दुल रशाद आप हैं मेरी ग्रेस आपके नाम भी हम गाना चला रहे हैं। आकाश आपको नमस्ते। और आयशा जो है गाना मांग रही है कृष्ण बख्तोर के लिए, जी हाँ सुखविंदर के लिए भी गाना जाएगा। विजयालक्ष्मी है वनकम टू यू। और रोजीदा दर्शन हेलो। जो मिया नाजिया आपके नाम जाएगा, थैंक यू सो मच। और रिजल यादव है, निशाना आपके लिए गाना हम चलाएंगे बिंदिया मुटुसामी। विनायक है, रीना नयांडुआ आपके नाम, केश के लिए रेनू। और शिवराज के लिए नमस्कार आपको और शुभ रात्रि। चलिए बहुत धन्यवाद, अगला गाना सुनते हैं कैलाश खेर की आवाज़ में लाखों में एक। ये रोमांटिक गाना हमारे रोमांटिक लोगों के लिए जो प्यार में

0: दिलों की आवाज की आवाज की आवाज
1: आठ बजकर 22 मिनट हुए हैं और यहाँ पर आपके कॉम्प्लीमेंट्स, आपके फ़ोन कॉल्स, आपके मैसेजेस के लिए बहुत धन्यवाद। आपको याद दिला दें कि हम लाइव टिकटॉक कर रहे हैं, अगर आप जुड़ना चाहते हैं, सुन रहे हैं हमें पता है रेडियो पर, अगर आप देख भी चाहते हैं तो आप जुड़ जाइए हमारे साथ लाइव टिकटॉक और एम फ्री रेडियो, जहाँ पर आप इस लाइव को शेयर कर सकते हैं। और

हमारे साथ एंजॉय कर सकते हैं और यहां पर संजय रामलाचन आपके नाम हम चला रहे हैं अगला गाना वसंती जो है नमस्ते आपको और मीरा आपको भी हम कहते हैं नमस्ते लीनिशा कामिनी है थैंक यू सो मच इंदिरा जी कैसी हैं आप हम तो बिल्कुल ठीक हैं और आप कैसी हैं नीलिमा जो है नाइस प्रोग्राम थैंक यू सो मच राधा आपको नमस्ते और आराधना राम जी आपके लिए और आपके परिवार के लिए खासकर आपके आपके प्यारे नाती के लिए जो बहुत ही क्यूट है हाय प्रिया मालिनी हम डिहल आपके लिए गाना हम चलाएंगे और साथ में नितेश नमस्ते आपको और साथ ही साथ में साधना अलगू धन्यवाद और ये गाना राहत फतेह अली खान की आवाज़ में फिल्म का नाम है तेज राहत फतेह अली खान के सभी फैंस के लिए उनके लिए गाना हम चला रहे हैं तेरे बिना दिल नहीं लगता

0: दिलों की आवाज की आवाज दिलों की आवाज
1: कभी राहत फतेह अली खान कभी कैलाश खेर कभी कुमार सानू और कभी उदित नारायण ऐसे ऐसे कलाकार जो है जो सुनकर दिल नहीं भरता कभी। और यहाँ पर वसंती है, थैंक यू सो मच आप साथ दे रही है साधना अलगो आपके लिए अगला गाना और साथ ही साथ में अनुषा जितन नमस्ते तरुण राम आपके नाम जाएगा अगला गाना सुदेवी जी है थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग कल्याणी सिंह आपके लिए हिमेश आपको भी हम अगला गाना डेडिकेट कर रहे हैं रोशन लाल और निर्मल कुमार यादव जो काम करते हैं मॉरिशस में सुबह को आज तो यो दासू आपके लिए अगला गाना शाम आपके नाम और साजा के लिए अगला गाना और नामिया जो है गाना मांग रही है मिथिलेश उनके हस्बैंड के लिए फ्रॉम त्यागूज कभी तो नज़र मिलाओ कभी गले लगाओ और इस रोमांटिक मौसम में अगर कोई हम सफ़र है आपके पास तो बस उसको हमेशा के लिए प्यार दे ताकि वो आपके साथ ही हमेशा रहे

0: दिलों की आवाज की
1: आवाज। आज बजकर 37 मिनट हुए हैं झा रेडियो मनोरंजन, जहां पर आप लोगों का हम मनोरंजन करते हैं और आप खूब एंजॉय करते हैं। हमें पता है आज संडे है, काफ़ी लोग कल के लिए तैयारी कर रहे हैं काम पर जाने के लिए। सुबह को आज तो यूँ वैसे इस बारिश के मौसम में बस कल काम पर जाने का मन ही नहीं करता है ना। कभी कभी बोलते हैं कि चलो एक दिन की छुट्टी और मिल जाए तो हमारे लिए कितना अच्छा होता। सो अगला गाना आश्विन के लिए जो हमें सुन रही है, थैंक यू सो मच, और बाल कृष्णा।

जीएम आपके लिए भी माला आपके नाम नीना तेज सनातन है अपनी फूफू के लिए गाना मांग रहे हैं और उनका जन्मदिन है ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद उनके लिए और जयश्री है जो रहती है यूके थैंक यू फॉर एंजॉयिंग आवर प्रोग्राम और आप हैं क्वीन रोमिता गुजा नमस्ते आपको डाली जो है हेलो और क्वीन आफरीन हेलो प्रतिमा दुकितराम है और गाना वो मांग रहे हैं हस्बैंड कृष्ण और मामा बसंती और सभी दुकितराम और रामसरन परिवार के लिए थैंक यू सो मच और आज 9 अगस्त जी हाँ 2024 काफ़ी लोग अपना जन्मदिन मना रहे हैं आप हमें देख रहे हैं या सुन रहे हैं सो वी विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे पूरी एमबीसी टीम की ओर से हमेशा हंसते मुस्कुराते रहिए और आगे बढ़े

0: दिलों की आवाज़ की आवाज़।
1: आज बजकर 43 मिनट हुए हैं, वैसे अभी थोड़ी देर में ये कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा और आप लोगों ने साथ दिया, हम आपको कहेंगे बहुत धन्यवाद। आफरीन जो है अगला गाना मांग रही है अपने लिए और साथ में गाना हम चलाएंगे फिरोजा, आपके नाम मनीषा दासू और स्वीटी युवना आपके लिए भी, चलिए प्यारी स्वीटी आपके नाम, और माला जो है धन्यवाद साथ देने के लिए। रुकाया सुदन आप रहती है रेजवी, वीर सिंह हेलो टू यू, शामिम जुमन हेलो, नरेंद्र जागीसौ जो हमें सुन रहे हैं फ्रॉम ट्रिनिदाद एंड टोबागो, थैंक यू सो मच। और प्रवेश सागम है, गाना जाएगा आपके लिए और पूरे सागम फैमिली ऑफ शांचिली मोका। मेहंदी हसन की आवाज़ में

0: दिल में समा जाऊंगा एक दिन। वैसे कोई खास इंसान तो होगा जो आप बहुत चाहते हैं और आज तक बात नहीं कर पाए, क्यों नहीं कर पाए ये आप ही जाने। कभी कभी हालात जो है हमें ये मौका नहीं देते हैं, बस हम उम्मीद करते हैं आज जो आप प्यार करती है आपको मिले जिंदगी में। अल्ताफ हुसैन के लिए अगला गाना,
1: ख्वाबों पे छा जाऊंगा एक दिन।
0: माया दी भी आपके लिए भी, मीना रामनाथ, देविका किस्तम्बा, वाइजा खान।

चलिए इस बरसाती मौसम में इस बरसात का जो गाना है कुमार सानू और रूप कुमार राठौर की आवाज़ों में नाजायज़ फिल्म से लिया गया 8:53 हुए हैं और साथ में बद बद बी देसी के लिए उनके लिए भी गाना हम चलाएंगे और साथ ही साथ में अल्तफ हुसैन जो हमें सुन रहे और देख रहे हैं फ्रॉम पाकिस्तान हेमा निपल सिंह

8:55 हुए हैं और इसी के साथ आज का प्रोग्राम यही समाप्त होता है। आपने साथ दिया, बहुत धन्यवाद। ऐसे हमेशा साथ दीजिए, हंसते मुस्कुराते रहिए और मिलते हैं बहुत जल्द। उषा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार, शुभ रात्रि।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: भोजपुरी तड़का।

0: भोजपुरी भोजपुरी तड़का तड़का
1: रात के 9:09 हो गलबाश सभी श्रोतागण के हमार नमस्कार स्वीकार करा जा आज हर रविवार के दिन और रात्रि में ता ठंडा गिरता तो हर खातिर भोजपुरी तड़का मन कर ले कोनो बढ़िया गाना सुने के ता अवश्य नंबर वा मिला ला काट सौदे काट हो वह सैक उषा तू हर संगे रात के 11 बजे ले आज का पहल का गीत सुना जा नीरज गुप्त मधु के गावल गीत

भोजपुरी तड़का तड़का रात के 9:21 हो गलबा श्रोता लोग एक से बरिया भोजपुरी गीतवन के भंडार बातें हमने के हिया बिना झिझक के मांग कर जा और वो गमतवा शुरू कर जा हिया परी संगीता जी जन रही ला क्यूपी परी बखत हमने के सुनता गाना मांगा था वन जा अपन खातिर और अपन परिवार खातिर और साथ में सुदेश जी जो रहते हैं वाहकुआ इबकत काम करता ENT हॉस्पिटल में तो चला अगला गीत तुहर खातिर और पूरे स्टाफ खातिर

आए हो? बड़ी दुख बेटा नटलक नहीं हो तब बहु मर्रक नहीं हो।

बेटी घर है का भाई हो बड़ी बेज बेटा डटला नहीं हो तब बहू मरला नहीं हो।

पूरी बोल के गावल गीत और ये गाना जाएगा संदीप जी खातिर और हिला लाफलोगा और बखत सात देवता और खास कर गाना एकर खातिर अपन पत्नी सुरेखा खातिर और बेटी आशा खातिर

श्रोतालोर मॉरिशस के भोजपुरी जगत में तक कितने चमकता सितारा जगमगावेला और भोजपुरी तरका के माध्यम से और ही तो लोग के फरमाइश से ओ लोग के शान और बढ़ेला बहुत धन्यवाद आप लोगन के अगला गीत भोजपुरी

जब देवता देवी आसन छोड़ दिया तो खीर पूरी चढ़ाने से क्या होगा। भर पेट जब भात खा लिया तो अब खुद ही चुनने से क्या होगा। अरे गंदे पानी पीकर

अरे रिश्ता जोड़ने से क्या होगा, अपने घर के कुत्ता जब काट दिया तो पुलिस को बताने से क्या होगा। अरे सफेद चादर में दाग लग गई तो अरे नदी में जाकर धोने से क्या होगा, जब घर की चौकट साफ किया नहीं तो आंगन झलकाने से क्या होगा। जब दूध से मुंह जल गई तो अरे माठा फूंक कर पीने से क्या होगा, जब दूध से मुंह जल गई तो अरे माठा फूंक कर पीने से क्या होगा।

2026 भोजपुरी तरका तुहर नाम जीवन में कबो कबो आप लोगन के लगेला कि बढ़िया मुश्किल होता परंतु मनुष्य के धरती पर जन्म ले के दूसर का मतलब है समस्या के समाधान ढूंढे के अपन बुद्धि से धैर्य से और विश्वास से तब विश्वास रखिया और अगला गीत चलाओ अब जा अमृता जी खातिर जन हमने के सुनाता ओकुले से गाना अपन खातिर और अपन परिवार खातिर सज्जन के सारी सुनीता ननकू के गावल गीत

रात के 10:10 हो गल बा छोटा लोग जितना साधन भा जिंदगी में खुशी से रहे कि आप लोगन के आप बोलब संगीत स्पोर्ट्स टीवी और विशेष रूप से रेडियो तोहर उत्तम साथी तोहर जीवन में रस एवं बाहर लावेला ता चिंता करे के ना चाहेला समझदार के इशारा ही काफी बा ता चला अगला गीत सुना जा बहुत ही प्यारा गीत सुभावती डुमन के गावल गीत और ये गाना बसंती जी खातिर जन हमने के सुनता मेबग से गाना एकर खातिर पति राजन खातिर और बच्चे लोग और पूरे परिवार खातिर

0: भोजपुरी
1: भोजपुरी तड़का तड़का भोजपुरी भोजपुरी तड़का तड़का
2: रात के 10:29 हो गल बा संघतिया लोगन आप तब भोजपुरी प्रेमी हवा जा अपन पुरखन के सपना सच करत हवा पर अब आप अपन लयका लयका के और नई पीढ़ी के ही भोजपुरी के पात थानी सिखाया जा चल पोपुरी चला चले के किशोर की मियाँ के गावल गीत और ही गाना खासकर सुदेवी जी खातिर जो न रही लावाकवा और ये बखत हमने के सुना था गाना अपन खातिर और देवीना जी जो हॉस्पिटल में काम करीला ये बखत हमने के सुना था तो बो कुराज टू यू और ये गाना तो हर खातिर और तो हर दोस्तों खातिर तो चला दोस्त लोगन खातिर और जितना कोई के वक्त गाड़ी चलावा था तो हर खातिर भी ये गाना सावधानी बरते के चाहिए और काहे कि अभी तो बारिश हुआ था

0: भोजपुरी तड़का।
1: श्रोता लोगन, ये कार्यक्रम समाप्त होए के बाद तुहर से आज्ञा चाहत है, हमेशा अपन ख्याल रखिया और इस सभी से प्रेम से पेश आया जा। नमस्ते और शुभ रात्रि।

0: सुनहरे पल, सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: गुड इवनिंग, नमस्कार और गिनिशा का प्रणाम। जी हाँ दोस्तों, रेडियो मॉरिशस पर आप सुन रहे हैं सुनहरे पल, जहाँ हर शाम हम लेकर आते हैं पुराने बॉलीवुड गीतों की वो खुशबू जो दिल को सुकून दे जाती है। जिंदगी की भागदौड़ में हमेशा हम अक्सर अपने लिए वक्त निकालना भूल जाते हैं, है ना। लेकिन पुराने गाने हमें कुछ देर के लिए उन हसीन लम्हों में वापस लेके जाते हैं। शायद आज का कोई गीत आपका कोई पहली मोहब्बत की याद दिला दे, स्कूल के दिनों या परिवार के साथ गुजरे खूबसूरत पल याद दिला दे। तो मुस्कुराइए, पुरानी यादों को आप गले लगा लीजिए और हमारे साथ इस सुनहरे सफ़र में जुड़ जाइए और मज़ा ले लीजिए इन खूबसूरत गीतों का।

दोस्तों, जिंदगी में पैसा और कामयाबी जरूरी है, लेकिन सबसे कीमती चीज होती है हमारी यादें। और पुराने बॉलीवुड गीत उन यादों को हमेशा जिंदा रखते हैं। सुनहरे पल में हम सिर्फ गाने नहीं सुनाते हैं, बल्कि उन एहसासों को महसूस कराते हैं जो कभी हमारे जिंदगी का हिस्सा थे। तो अगर आप भी किसी पुरानी याद में खो जाना चाहते हो, तो बने रहे हमारे साथ ऑन रेडियो मॉरिशस इन योर सुनहरे पल।

So my lovely, lovely listeners, उम्मीद है आपका दिन अच्छा सा गुजरा होगा. अब वक्त है थोड़ा सा सुकून पाने का पुराने गीतों के साथ. वैसे कहते हैं कि वक्त बदल जाता है, लोग भी बदल जाते हैं, लेकिन कुछ यादें और कुछ नगमे पुराने कभी नहीं होते. बिल्कुल जी, तो चलिए आज की ये खूबसूरत रात उन्हीं यादों और उन्हीं गीतों के नाम जो बस आपके दिल के बहुत ही ज़्यादा करीब हैं,

I really hope कि आपको दिल से अच्छा लग रहा है ये खूबसूरत पुराने गीतों का ये सिलसिला जो आपके और हमारे बीच चल रहा है। तो दोस्तों, बचपन की वो शामें याद है ना आपको, जब पूरा परिवार एक साथ रेडियो के आसपास बैठकर गाने सुना करते थे। आज सुनहरे पल उन्हीं यादों को फिर से ताज़ा करने आ गए हैं हम। जहां जिंदगी चाहे कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, एक अच्छा गीत दिल को हल्का कर ही देता है। तो बस ये अगला नगमा की निशा की तरफ से आपके नाम ऑन रेडियो मॉरिशस।

वैसे तो देखा जाए कि हर इंसान की जिंदगी में कुछ ऐसे लम्हे होते हैं जो कभी भुलाए नहीं सकते। पहला प्यार, पहली नौकरी, दोस्तों के साथ बिताए पल और माँ के हाथों का खाना, पुराने बॉलीवुड गीत जो है ना, इन सब यादों को और भी खास बना देते हैं। तो दोस्तों, आज की ये खूबसूरत सी शाम अपने दिल को पुरानी यादों की सैर पर ले जाने के लिए तैयार रखे, क्योंकि अगला गाना मुझे बिल्कुल पता है कि आपको इतना अच्छा लगेगा कि आप हमारे साथ गुनगुनाएंगे। तो लीजिए ये गाना खासकर आपकी उन यादों के नाम।

वल जिंदगी एक किताब की तरह होती है, मानो या ना मानो हमारी जिंदगी बिल्कुल एक किताब की तरह होती है। हर दिन एक नया पन्ना खुलता है, लेकिन कुछ पन्ने ऐसे होते हैं जिन्हें हम बार बार पढ़ना चाहते हैं। सुनहरे पल में हम उन्हीं पन्नों को फिर से पलटने वाले हैं पुराने गीतों के साथ। तो चलिए आराम से बैठ जाइए और अगले गीत का आप दिल से आनंद लीजिए।

सुनहरे पल ऑन रेडियो मॉरिशस रोज रात को 11 बजे से लेकर 12 बजे तक हम आ जाते हैं अपना कीमती वक्त निकालकर आपकी जिंदगी में खुशियां लाने के लिए और उम्मीद करते हैं कि आपको दिल से अच्छा लगा आज का ये शो। लेकिन फिलहाल के लिए जाना तो पड़ेगा जी, तभी तो हम इजाजत मांग रहे हैं ताकि कल हम दोबारा वापस आ सके। तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाजत। शुभ रात्रि और शब्बा खैर। अपना ख्याल रखना जी।

0: मेरी तो ट्रेजेडी यही है, मैंने जिससे भी प्यार किया सबको खो दिया, माँ बाप भाई यहां तक कि।
1: तुम बहुत लकी हो शेखर कि तुम्हारे पास कुछ खोने के लिए था। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्होंने कुछ पाया ही नहीं जो खो सके। मेरी आंखों में देखो शेखर।
0: डरता हूं कहीं फिर से प्यार ना करने लगूं और दोबारा चोट खाने की हिम्मत।
1: मैं वादा करती हूँ शेखर कि आज के बाद तुम्हारा दिल कभी नहीं टूटेगा। I promise you that I will never ever hurt you.

0: हो गया।
1: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग MBC रेडियो

मामा के पंच पकड़ मच्छी।

बेटी घरे का भाई हो बड़ी बेस बेटा डटला नहीं हो तब बहू मरला नहीं हो।